कटोरी मुर्दासनी ने जुगते करी ने जो एकड़ा बतावी काया तड़ी ने मारा काड़ जा जा प्या को कड़ जा का पीने करुणा करी करी मुझ पर मैं ए जोखो मटाई

डरिए परीक्षा करिले विधि ना माजा बाण रे एम हमारा प्राण प्राण विधान प्रीतम धारी देखा जो दसमो द्वार एक कुटिया कर समझी।

印度理广播电台第二首歌是马辛德拉·卡布尔唱的，请收听。

0: जब शहर हमारा सोता है, जब शहर हमारा सोता है।
1: 听众朋友们，今天的节目很快结束，请把您有关我们的广播节目的包裹建议留在 WhatsApp 手机号码8076598706，和可以写在 esdchinesedaily@gmail.com。今天的节目播送到这里，下次再会。

श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने बाग में गए। वसंत ऋतु के प्रभाव से सब ओर वहां प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बनती थी। नए नए पत्तों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष लहला रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच निर्मल जल भरा सुहावना सरोवर बहुरंगी कमल पुष्पों से शोभित है और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। मालियों से अनुमति लेकर दोनों भाई पुष्प एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण

एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं। यह सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन राजकुमारों के दर्शन के लिए अपनी सखी को साथ ले आगे चलीं।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है, उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं।

0: तो पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
0: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग, खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
5: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के

0: दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। यह टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और विल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पश्चिम पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपये होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Centre signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the Centre has signed a historic tripartite Memorandum of Understanding, MOU, with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, and his Nagaland counterpart, Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
6: आज सिर्फ एक एमओयू से ही
7: विद जस्ट दिस वन एमओयू वी विल बी एबल टू इंक्रीज आवर ऑयल एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी फ्रॉम 1000 टू 1500 बैरल्स पर डे टू मोर देन 10 टाइम्स दैट लेवल इन अ सिंगल फील्ड देयर इज आल्सो अ पोटेंशियल रिकवरी ऑफ ओवर रुपीज 15000 करोड़ इफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स अक्रॉस नागालैंड आर प्रॉपरली एक्सट्रैक्टेड आई बिलीव इट विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज व्हिच करंटली सप्लाई अस ड्यू टू आवर शॉर्टेजेस इन दिस सेक्टर
6: वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे.
5: Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma said that boundary issue between Assam and Nagaland is a long-standing issue due to which the natural resources lying in the area could not be utilized for the nation.
8: In the area, we see immense potential.

0: reports the Tribune. Union Home Minister Amit Shah has been quoted in the Pioneer as saying that the Armed Forces Special Powers Act will be withdrawn from the entire Northeast next year, barring one or two states. In its editorial piece titled Green Energy Can't Yet Bend Climate Curve, the Indian Express argues that despite record growth in renewable energy, the world is still failing to slow global warming because major sectors remain dependent on fossil fuels. The paper says the clean energy transition must be accompanied by deeper industrial change, stronger policy support, technological innovation and international cooperation. Anthropic CEO Dario Amodei has sought serious and binding artificial intelligence rules and called for mandatory testing and government powers to block risky systems, reports Financial Express. And finally, the Asian Age has quoted US agency NOAA as confirming that the weather phenomenon El Nino has begun and will intensify into the end of the year, potentially to historic strength. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jaishankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. U.S. President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकज ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। सरकार ने सिक्योरिटी निज़ाम से बचने और माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की खातिर मसनू ज़हानत का इस्तेमाल करने के साइबर मुजरिमों के बढ़ते हुए ख़तरे के तनाजुर में एडवाइजरी जारी की है। वज़ीर ख़ारजा एस जय शंकर ने मौजूदा महाज़ाराई के दौर में मुतनव्वे सप्लाई निज़ाम और बैन अल-अक़वामी इश्तराक में इजाफे पर ज़ोर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी आला नेफ्यू रियो की मौजूदगी में इस मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि मज़कूरा मुफाहमतनामे पर दस्तखत एक तारीखी लम्हा है और इससे मुल्क में तेल और कुदरती गैस की तलाश के इम्कानात में इजाफा होगा।
3: अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मुलाजमत से मुतालिक पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म्स या फोन कॉल्स के जरिए राबते कायम करते हैं। डीप फेक का पता लगाने के तरीक़ेकार को मुस्तहकम बनाएं और सारफीन को शामिल करने के निज़ाम को वसत दें। लोगों से भी
2: करने कहा कि टकराव और लड़ाई के असरात उन खित्तों से बाहर तक मुरतब होते हैं जहाँ ये हो रहे हैं, अलहूज़े खातिर रखते हुए किया जाता है और इस सिलसिले में कोई भी सरकारी खरीद कम वक्त और दस्तियाबी की सूरत हाल पर मबनी होती है।
3: बड़ी खास बात COVID-19 बहरान के दौरान सामने आई, जब उसने अपनी इंसान दोस्त सिफारतकारी के सबूत के तौर पर वो 30.12 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन फराहम की। बांग्लादेश में मुकीम फिजियोथेरेपिस्ट और योग टीचर डॉक्टर बुनियाद पर मदद और आफात से निजात फराहम करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। भारत ने 1000 टन से ज्यादा इमदादी सामान पहुंचाया, जिसमें खुश्क राशन, खेमे, तिरपाल, हाइजीन किट्स, कपड़े, पानी साफ करने वाले किट्स और तकरीबन 4.5 टन अद्वियात और सर्जिकल आलात, इसके अलावा 60 टन खसूसी साजो सामान शामिल था। भारत की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए श्रीलंका के बंदरगाहों और हवाबाजी के नायब वजीर जमित रोवान कदी थुकोव ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के साथ

Gare,

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप आनंद उठा रहे थे पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज द्वारा राग गुर्जरी तोड़ी में गायन का। इनके साथ संगत कर रहे थे तबले पर अख्तर हसन। 9:15 होने को है, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है स्वदेशी और स्वावलंबन पर महात्मा गांधी के विचार। आलेख एवं स्वर मधु शर्मा।
1: महात्मा गांधी के लिए स्वदेशी व स्वावलंबन अर्थात आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नीतियां नहीं अपितु राष्ट्र की आत्मा और स्वतंत्रता या स्वराज के आधार थे। गांधी जी के अनुसार स्वदेशी का अर्थ अपने स्थानीय संसाधनों और पड़ोसी उद्योगों का उपयोग करना है, जबकि स्वावलंबन का अर्थ अपनी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनना है। वे खादी और ग्राम उद्योग को इसका प्रतीक मानते थे। स्वदेशी आंदोलन सन 1905 से सन 1911 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक युगांतकारी आंदोलन था, जो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना था, जिससे देश में आत्मनिर्भरता आए। यह गांधी जी के आने से पूर्व एक सफल आंदोलनों में से एक था, जिसने देश में राष्ट्रवाद की लहर पैदा की। स्वदेशी व स्वावलंबन में दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। यदि हम आत्मनिर्भर हैं, तो हम स्वदेशी भी हैं। स्वावलंबन का अर्थ है आत्मनिर्भरता अर्थात अपने उपयोग की वस्तुओं का स्वयं निर्माण करना, दूसरों पर किसी भी प्रकार से निर्भर न रहना। महात्मा गांधी का मानना था कि आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन एक ऐसा स्वप्न है जो हमारे भारत को उज्जवल बनाने में सहायक है। स्वावलंबन के लिए भारत को अपने उद्योगों और व्यवसायों को बढ़ावा देना होगा। महात्मा गांधी का कहना था कि स्वराज स्वदेशी स्वावलंबन का मेरे लिए अर्थ है अपने सर्वाधिक दीनहीन देशवासियों की स्वतंत्रता। मुझे केवल भारत को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने में ही रुचि नहीं है, अपितु मैं भारत को सभी प्रकार की पराधीनताओं से मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध हूँ। मुझे शासक के स्थान पर दूसरे शासक को लाने की जरा भी इच्छा नहीं है। राष्ट्र को यदि हमें समृद्धशाली बनाना है तो गांवों को एक इकाई के रूप में देखना होगा। प्राचीन काल में भी हमारे देश भारत में प्रत्येक गाँव में ही वस्त्र औजार अन्न आदि की जरूरतें पूरी होती थी। विविध जातियों और समुदायों के लोग मिलजुल कर पूरे गांव की आवश्यकताओं को पूर्ण करते थे। इसीलिए हमारे देश की ग्रामीण परंपरा अत्यधिक समृद्ध थी। आवश्यकता अनुसार सभी जरूरतें एक गांव में पूर्ण हो जाती थी। महात्मा गांधी का स्वप्न

देश को आत्मनिर्भर भी होना चाहिए। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब देश की संपूर्ण संपदा समृद्धि यहाँ से ब्रिटेन पहुंचाई जा रही थी। हमारी मेहनत, हमारी ऊर्जा, हमारे रत्न सब कुछ निचोड़कर ब्रिटेन पहुंचाए जा रहे थे। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा, हम स्वदेशी के आधार पर पुनः संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और उन्होंने देशवासियों को चरखे का यंत्र दिया। चरखे के रूप में हमारे देश भारत को एक नया आत्मविश्वास व स्वाभिमान मिला। चरखा केवल एक यंत्र नहीं था अपितु हमारी स्वदेशी उद्यमता का सबसे बड़ा प्रतीक था। हमारे देशवासियों ने अपने कपड़े स्वयं बनाने प्रारंभ किए, जिससे लोगों को काम मिला तथा देशवासियों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया। आज फिर ऐसा ही समय आ गया है, पुनः स्वावलंबन व स्वदेशी भावना को जागृत करना आवश्यक हो गया है। भारतवासी, भारत की कंपनियां उत्तम कार्य कर रही हैं। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसका हम उत्पादन न कर सकें। हम देशवासियों का कर्तव्य बन जाता है कि स्वदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करें। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कुटीर उद्योगों व ग्रामीण उद्योगों से जो सामग्री बनकर आती है उस सामग्री को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब हम कुटीर उद्योग से जुड़ते हैं ना, तब उन लोगों को हम परोक्ष रूप से मदद करते हैं जो आर्थिक रूप से अपने आप को समाज में स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनके जीवन को हम गति दे सकते हैं। हमारा किसान, हमारे श्रमजीवी को भी हम मुस्कुराने का सुअवसर दे सकते हैं। ब्रिटिश हुकूमत ने तंगहाली, अव्यवस्था, महामारी से जूझते जनसाधारण को भुखमरी की ओर धकेल दिया था। उनके रोजगार के अवसर भी छीन लिए थे। धार्मिक झगड़ों में जनमानस को उलझा अपनी ही तिजोरियां भरने का काम किया। इस निसहायता और अपमान के चुंगल से उन्हें स्वआश्रय बनने का रास्ता गांधी जी ने बताया। यदि सभी लोग जिम्मेदारी से अपने उपयोग भर अनाज और वस्तुएं ले तो अनाज और वस्तुओं की तंगहाली को काबू किया जा सकता है। गांधी जी के बताए संयम के विषय में लोह पुरुष सरदार पटेल का मत था कि सरकारी सहायता के बिना अन्न उगाना कठिन तो है, और यदि अन्न उगा भी लें और सही व्यक्ति तक वह अन्न पहुंच जाए, यह भी एक बहुत विकट चुनौती है। हम जहां रहते हैं वहीं हमारी जरूरतों की पूर्ति हो जाए, लेकिन आपसी धार्मिक जातिगत झगड़ों के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। जहां जनता को दो वक्त की रोटी ना मिल पा रही हो और रोजगार अनियमित और अल्पकालिक हो, वहां रोजगार उत्सर्जन के लिए गांधी जी ने स्वावलंबन को स्वदेशी से जोड़ा। जन सामान्य के लिए रोजगार और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति गांव के आसपास ही पूरी हो, खादी और ग्रामोद्योग से हर घर में रोजगार की आशा जागी। स्वदेशी ही अपनाओ, स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन करो। गांधी जी अपने जन्म दिवस को चरखा दिवस के रूप में मनाते थे। गांधी जी अपने अंतिम समय तक चरखा कातते रहे और अपने अनुयायियों को भी चरखा कातने को कहते रहे। इनके अर्थशास्त्र के आगे आज तक कोई विकल्प मिला ही नहीं है। चरखे को सत्य, अहिंसा, शांति, समानता, सर्वोदय के रूप में ग्रहण किया था। स्वयं सेवक जन जन तक खादी को पहुंचाते थे। मशीन से बनी वस्तुएं यद्यपि आंखों को भले ही अच्छी लगें, लेकिन हमारे अर्थशास्त्र को बिगाड़ने का कार्य मशीनों ने ही किया। स्वदेशी आंदोलन को बहुत अधिक जन समर्थन मिला। देशवासियों की सहायता करने के लिए लोगों ने स्वदेशी को अपनाया, विदेशी वस्तुओं को छोड़ा। देश के प्रत्येक कोने में सम्मान पूर्वक जीवन यापन के साधन मिले। साथ ही लुप्त होती लोक कलाओं जैसे हस्तशिल्प, हस्तकला को नया जीवन मिला। यदि खादी से आत्मीयता है तो हमें अपने जीवन में सादगी को महत्व देना चाहिए। महात्मा गांधी कहते थे कि जब नागरिक शिक्षित, सामर्थ्यवान व स्वावलंबी होंगे, तभी वे पिछड़े साथियों को सहारा दे सकेंगे। जिस व्यक्ति को अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, उस व्यक्ति का दबाव और अत्याचार बढ़ने लगते हैं।
जहां परस्पर

0: विश्वास सामर्थ्य का नाता है, ऐसे प्रबुद्ध भारत की गांधी जी ने कल्पना की थी। कोई भी व्यक्ति यूं ही महान नहीं बन जाता, उसकी सोच, उसके कार्यकलाप उसे महान बनाते हैं। कुछ ऐसे सिद्धांत जिससे व्यक्ति समझौता नहीं करता, चाहे उसके लिए कितना भी कष्ट झेलना पड़े। गांधी जी सत्य के आग्रही थे, सत्य को वे ईश्वर मानते थे, सत्य उनके लिए सर्वोपरि था। आधुनिक युग में भी महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए नियम व विचार भारत को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था स्वदेशी और स्वावलंबन पर महात्मा गांधी के विचार। आलेख एवं स्वर मधु शर्मा।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 9:30 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: أعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون
1: وش

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: London.
1: कहते हैं जिस पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं वही आंधियों में भी अडिग खड़ा रहता है। हमारी जिंदगी की जड़ें भी हमारे बुजुर्ग ही हैं। उनके अनुभव, उनकी सीख, उनकी दुआएं और उनका स्नेह हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक कदम बुजुर्गों की ओर। साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। और आज आपके साथ इस सफर में आपकी हम सफर हूं मैं, आपके रेडियो हम सफर सोनाली। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बढ़ाएंगे एक ऐसा कदम जो सम्मान का भी है, संवाद का भी और अपनत्व का भी। आइए दिल से जोड़ते हैं उन हाथों से जिन्होंने हमें चलना सिखाया और उन आंखों से जिनमें आज भी हमारे लिए ढेरों दुआएं बसी हैं। स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों के लिए में। कहते हैं बस उन्हीं की आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। और अब हम करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे सी गीत के साथ।

रीना लैला को आप सुन रहे थे फिल्म घरांदा में, और देखिए प्यार हमें आपसे है और बेशुमार है। अब कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत से जरूर हुई है, लेकिन आपका और हमारा प्यार तो इतना ज़्यादा है कि उसका तो खैर कोई सानी ही नहीं है। तो आपका प्यार हम तक पहुंचता कैसे है? जी हाँ, पहुंचता है आपकी ईमेल के माध्यम से। तो हमारी ईमेल आईडी आपको पता ही है, फिर भी बता देती हूँ आपको, वो है fmgoldga@gmail.com। तो इंतज़ार है आपकी बातों का, आपकी कमेंट्स का और आपकी प्रतिक्रियाओं का। दोस्तों आज शुक्रवार है, आप सभी जानते हैं, और ये दिन है समर्पित किनको? जी हाँ, हमारे बुजुर्गों को। लेकिन ना, आज की तारीख है 12 जून, और आपको पता है आज हम एक और विशेष दिवस है आज के दिन, और वो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। बचपन हाथों में मेहनत का बोझ नहीं, सपनों की उड़ान मांगता है ना? और इस वर्ष की जो थीम है ना, वो है रेड कार टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रेन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। यह थीम इस बात पर जोर देती है दोस्तों कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण बचपन मिले, और परिवारों को ऐसा सम्मानजनक रोजगार मिले कि बच्चों को मजदूरी करने के लिए मजबूर न होना पड़े। तो आइए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और मुस्कुराने का अधिकार मिले। जी हाँ दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। कभी उम्र को केवल जीवन की संध्या माना जाता था, लेकिन आज बदलते समय के साथ ना ये धारणा भी बदल रही है। वरिष्ठ नागरिक अब केवल अनुभव के धनी ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में भी देखे जा रहे हैं। और इसी सोच से जुड़ा है एक बेहद नया शब्द, और वो है सिल्वर इकोनॉमी। सिल्वर इकोनॉमी का संबंध ना उन सेवाओं, सुविधाओं और उत्पादों से है जो विशेष रूप से हमारे वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किए जाते हैं। इसमें ना स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर पर्यटन, डिजिटल सुविधाएं, वित्तीय सेवाएं, सहायक उपकरण और देखभाल से जुड़ी उनकी अनेक गतिविधियाँ शामिल हैं। भारत में ना वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह जो क्षेत्र है ना, यह तेज़ी से बहुत ज़्यादा महत्व प्राप्त कर रहा है। आज ना अनेक ऐसी संस्थाएं हैं और ऐसे उद्योग हैं

भावनाओं का भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है ना। और जब हमारी सोच और हमारे बुजुर्गों की इच्छाएं और उनकी जरूरतें एक साथ मिल जाती हैं, तो उनका मेल ऐसे हो जाता है जैसे फूल के साथ खुशबू, है ना।

फिल्म प्रेम गीत में आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और अनुराधा पौंडवाल की आवाज में ये गीत। दोस्तों, जीवन के हर पड़ाव की अपनी गति और अपनी जरूरतें होती हैं। बढ़ती उम्र के साथ हम ये समझने लगते हैं कि जीवन में हर बात उपलब्धि या प्रदर्शन से नहीं बल्कि संतुलन और सहजता से भी जुड़ी होती है। शायद योग हमें भी यही सिखाता है। अक्सर योग का नाम आते ही ना कठिन आसनों की तस्वीर मन में उभरती है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग का अर्थ कुछ और है। ये शरीर को उसकी क्षमता के अनुसार सक्रिय बनाए रखने, श्वास पर ध्यान देने और मन को शांत रखने का एक अभ्यास है। योग हमें ना अपने शरीर की सुनना सिखाता है। जी हाँ, ये हमें ये बताता है कि हमारा शरीर क्या कह रहा है। आइए हम ये सुने। ये बताता है कि हर दिन थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालना भी उतना ही जरूरी है जितना जीवन भर दूसरों के लिए समय देना। बढ़ती उम्र में योग लचीलेपन की प्रतियोगिता नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा। ये शरीर और मन के साथ एक सहज संवाद का माध्यम है दोस्तों, और ना कुछ सरल अभ्यास, नियमितता और सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन को अधिक संतुलित और सुखद बना सकते हैं। आखिरकार योग

केवल आसनों का अभ्यास नहीं होता, बल्कि स्वयं के साथ ना एक सामंजस्य स्थापित करने की एक बहुत सुंदर सी प्रक्रिया है। इसीलिए बढ़ती उम्र में योग का अर्थ लचीलापन नहीं बल्कि सहजता है, इसे हमेशा याद रखिएगा। और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा बहुत योग अपने जीवन में ज़रूर उसको स्थान दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, वो हमारे शरीर का दर्पण है। और हमारा जो हमारी आत्मा अगर स्वस्थ होगी तो हमें अपने आप उस परमपिता के दर्शन हो जाएंगे, है ना।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये सुमधुर गीत। दोस्तों, हमारे साथ हमारे एक बहुत ही नियमित श्रोता जुड़ चुके हैं और वो बहुत खूबसूरत शब्दों में हमें एक संदेश देते हैं। वो लिख रहे हैं, वरदान, खुशी, आशीर्वाद तीनों एक साथ मिल सकता है जब कोई बुजुर्ग निःशब्द तुम्हारे सिर पर अपनी कांपती हुई उंगलियां फेर दे। बस क्या बात है। नमस्कार, आप हमें नमस्कार लिख रहे हैं और ये कौन है? ये है, जी हाँ, नवीन भाटिया जी, मोतीनगर, नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, हमारे साथ हर दिन बने रहने के लिए। और हमारे साथ हमारे एक और श्रोता जुड़ चुके हैं, ये हैं गौरी शंकर जी, नांगलोई से। लिखते हैं, सोनाली बेटा, राम राम। आपके प्रोग्राम में बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, अगर इस पर अमल करें तो ज़िंदगी सफल हो जाती है। लेकिन आज के समय में फ़र्क है, मैं तो यही कहूँगा अपने साथियों को, बच्चे जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, उन पर कोई दबाव मत दो, तभी आपकी ज़िंदगी खुशी से गुजर जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरी शंकर जी, हमारे साथ बने रहने के लिए। और आप सभी जानते हैं, हम सुन रहे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आज हमारे आसपास इसके कई सुंदर उदाहरण दिखाई देते हैं। एक समय था ना जब चिट्ठियों का इंतजार हुआ करता था, फिर टेलीफोन आए और अब मोबाइल ने दुनिया को अपनी हमारी हथेली तक पहुंचा दिया है। आज बहुत से बुजुर्ग इस नई दुनिया के साथ कदम मिला रहे हैं। कोई वीडियो कॉल पर दूर बैठे बच्चों से बात कर रहा है, तो कोई ना मोबाइल से बिल जमा कर रहा है, तो कोई नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा है और ये बदलाव बहुत खुशी देता है ना। लेकिन हर नई राह की तरह इस राह पर भी थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। कई बार फ़ोन संदेश या लिंक के जरिए लोगों को धोखा देने की कोशिश की जाती है। ऐसे में किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी, OTP या बैंक से जुड़ी बातें साझा करने से हमेशा बचना चाहिए। अगर कोई बात समझ में ना आए ना, तो आप बस झिझकिए मत, अपने बच्चों, परिवार या बैंक से पूछ लीजिए। देखिए, एक सवाल पूछ लेना बाद में परेशान होने से कहीं बेहतर है। नई तकनीक से डरने की नहीं, उसे दोस्ती करने की जरूरत है, है ना। और बस इतनी सी बात याद रखिए कि समझदारी और सावधानी दोनों साथ रहें। दुनिया बदल रही है और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बुजुर्ग भी उसके साथ चल रहे हैं, क्योंकि सीखने, समझने और आगे बढ़ने का सफ़र कभी रुकता नहीं है। और जब इस सफ़र में आपके साथ हम सफ़र हो FM गोल्ड, तो क्या बात है, क्योंकि हम यहाँ पर लेकर आते हैं आपके लिए सदाबहार गीत। तो आइए अब सुनते हैं एक और बहुत ही सदाबहार गीत।

लव इन टोक्यो में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के एफएम गोल्ड यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर, और आज आपके साथ मैं हूँ। जी हाँ, आपकी रेडियो हम सफर सुना ली। कहते हैं घूमने फिरने का शौक उम्र नहीं देखता, बल्कि कई लोग तो कहते हैं कि जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ा फुर्सत मिलने के बाद ही उन्हें घूमने का असली मौका मिलता है। नई जगहें देखना, नए लोगों से मिलना और नए अनुभव हासिल करना हर उम्र में अच्छा लगता है। हाँ, बढ़ती उम्र में सफ़र पर निकलते समय कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूर ज़रूरी है ना। घर से निकलते समय अपनी दवाइयाँ साथ रख लें और मौसम के हिसाब से तैयारी ज़रूर कर लें। अगर किसी दूसरे शहर जा रहे हैं तो घर वालों को अपनी इस यात्रा की जानकारी देकर ही जाएं। सफ़र के दौरान बहुत ज़्यादा सामान उठाने से बचें, मोबाइल साथ ज़रूर रखें, और हाँ, ज़रूरी नंबर उसमें सेव हों तो और अच्छी बात है। अगर थकान जरा सी भी महसूस होना तो कहीं पर भी ना रुक कर थोड़ा सा आराम जरूर करें। सफर का मजा तभी है जब हम उसे आराम से जिए, है ना। मतलब भागा दौड़ी ना करें, अपने शरीर का जरूर ख्याल रखें, और जहां भी थोड़ी सी भी आपको लगे कि कुछ उलझन सी हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है, तो आप वहीं रुक जाइए और थोड़ा सा सांस ले लीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। घूमना फिरना सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं है, ये तो आप मानेंगे ना। यह रोज़मर्रा की दिनचर्या से ना थोड़ा बाहर निकलने, नई ऊर्जा महसूस करने और अच्छी यादें बनाने का भी एक जरिया है। इसीलिए उम्र चाहे जो भी हो, अगर सफ़र का मौका मिले तो उसे हाथ से जाने मत दीजिएगा। बस थोड़ी तैयारी और थोड़ी सावधानी के साथ निकल पड़िए एक नई मंजिल की ओर, क्योंकि आपको क्या पता जीवन के किस मोड़ पर कौन कहाँ आपसे मिल रहा है।

0: आप सुन रहे थे फिल्म झूठा कहीं का। इस फिल्म में किशोर कुमार के साथ आशा भोसले की आवाज में ये गीत। हमारे साथ हमारे ना एक और दोस्त जुड़े हुए हैं, वो है सुदर्शन मुखी जी। उनके साथ है अनिता मुखी और सिमरन मुखी, और ये हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और इन्हें सारी बातें अच्छी लग रही हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। सुदर्शन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों, समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई और काम के सिलसिले में दूसरे शहरों या देशों में चले जाते हैं। ये आज के समय की एक सामान्य सी बात है, लेकिन कई बार ना इस दूरी के साथ एक खालीपन भी महसूस होने लगता है। ऐसे में यह याद रखना बहुत ज़रूरी है कि दूरियां हमें रिश्तों को कमज़ोर नहीं करती। जी हाँ, दूरियां हमारे रिश्तों को कभी कमज़ोर नहीं करती। आज ना फ़ोन, वीडियो कॉल और संदेशों के जरिए अपनों से जुड़े रहना पहले से कहीं आसान हो गया है, है ना। और कई बार ना दिन भर की बहुत, अगर हम बहुत ज़्यादा व्यस्त भी रहते हैं, तो इसके बीच में कुछ मिनट अपने दोस्तों से या अपने लोगों से, अपने बच्चों से बातचीत करके ना दिल में एक बहुत अलग सी शांति और सुकून हमें मिलता है। बढ़ती उम्र में ना दोस्तों, पड़ोसियों और अपने शौकों से जुड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है, ये आप हमेशा याद रखिए। जीवन केवल बच्चों की इर्द गिर्द नहीं घूमता, हाँ, उसमें अपने लिए भी एक जगह होनी बहुत ज़रूरी है। अकेलापन तब ज़्यादा महसूस होता है जब हम खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं। इसीलिए लोगों से मिलते रहिए, अपनी पसंद की गतिविधियों में हिस्सा लीजिए और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को अपनाइए। बच्चे भले दूर हों, लेकिन रिश्तों की गर्माहट दूरी से कम नहीं होती। कभी एक फ़ोन कॉल, कभी एक मैसेज और कभी छोटी सी मुलाकात भी दिलों को करीब बनाए रख सकती है, है ना। तो बस यही आप हमेशा सोचते रहिए, देखते रहिए, लोगों के साथ मिलते रहिए और अपनी ज़िंदगी में प्यार को बनाए रखिए, क्योंकि इस समय में आपका हम सफ़र अगर आपके साथ है तो इससे ज़्यादा भली बात और कोई हो ही नहीं सकती। अपने उस जीवन साथी का साथ हमेशा निभाते रहिए, उसके साथ समय बिताइए और जीवन के इस पड़ाव को उतने ही प्यार और खूबसूरती के साथ जिए जिस तरह अपना आप पूरा जीवन जीते आए हैं।
1: हाँ? क्या कहा?

फिल्म रामपुर का लक्ष्मण, इसमें आप सुन रहे थे किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। अच्छा दोस्तों, कभी संगीत सुनने का शौक था, कभी बागवानी का था, कभी डायरी लिखने का या कुछ नया पढ़ने का शौक था। था क्यों? है होना चाहिए ना। जी हाँ, रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों के बीच ना ये शौक कहीं आपके पीछे रह गए ना, लेकिन अब तो समय है, आप इन्हें फिर से अपना सकते हैं। संगीत, मानेंगे ना, मन को सुकून देता है। बागवानी जो होती है वो हमें हमारी प्रकृति के बहुत करीब ले जाती है, और अगर आप लिखने के शौकीन हो तो क्या बात है, अपने मन की बात कहने का ये एक सुंदर जरिया बन सकता है। ऐसे शौक न केवल समय को हमारे सार्थक बनाते हैं, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भी भरते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका शौक बहुत बड़ा हो, कभी किसी पुराने गीत को सुन लेना, और अगर पुराने गीत सुनना है तो आपको कहाँ बने रहना है, हाँ, FM गोल्ड 100.1 MHz पर। तो किसी पौधे की देखभाल कर लेना या फिर दिन भर के अनुभवों को कुछ पंक्तियों में लिख लेना भी एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। जीवन की खूबसूरती यही है कि सीखने और नए अनुभवों के लिए कभी देर नहीं होती। इसलिए अगर कोई पुराना शौक आज भी दिल के किसी कोने में दस्तक देता है ना, तो उसे फिर से अपनाने में संकोच कैसा। कभी कभी वही पुराने शौक जीवन में नई खुशियां लेकर आते हैं, है ना।

फिल्म ममता में आप सुन रहे थे आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये गीत। दोस्तों, हम आपके साथ एक बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर साझा करना चाहते हैं और वो है, जी हाँ, जीवन प्रमाण यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल सुविधा। अब क्या हो रहा है ना कि समय के साथ बहुत से काम आसान होते जा रहे हैं और तकनीक का लाभ अब हमारे बुजुर्ग लोगों तक भी पहुंच रहा है। ऐसी एक सुविधा है जीवन प्रमाण, जो पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई है। अब क्या होता है, पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को हर साल ये प्रमाण देना होता है कि वे जीवित हैं, ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। पहले इसके लिए बैंक या हमें संबंधित कार्यालय में जाकर के जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता था, लेकिन अब ना जीवन प्रमाण की डिजिटल सुविधा ने इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। जीवन प्रमाण एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है जिसे ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। इससे हमारे बुजुर्गों को बार बार बैंक या कार्यालय के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये सुविधा ना उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिन्हें किसी स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण बाहर जाने में कठिनाई होती है। तो आप जीवन प्रमाण से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है ना, जी हाँ, jeevanpraman.gov.in पर भी जा सकते हैं। वहाँ इस सुविधा से संबंधित बहुत सारी आपको जानकारियाँ बहुत विस्तृत रूप में मिल जाएंगी। और नई चीज़ें सीखने और अपनाने की कोई उम्र नहीं होती, हम बार बार आपसे यही कहेंगे। और जब तकनीक जीवन को सरल बनाने में मदद करे तो उससे दोस्ती कर लेना ही सबसे बेहतर है।

जी हाँ, आप ही के जादू के साथ इस कार्यक्रम को हमने पूरा पूरा किया और अब देखिए घड़ी हमें इशारा नहीं करती कि हम इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। तो बस आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी आपकी रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: हर आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमरीका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. He added that the government is actively supporting self-help groups, which are going a long way in making women financially independent. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. In a notification, the Petroleum and Natural Gas Ministry said restrictions will be in place for up to 90 days. The retail outlets have been directed to sell up to 200 litres of high-speed diesel to a customer per day to prevent bulk purchase. Union Home Minister Amit Shah is chairing a high-level meeting to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi, National Security Advisor Ajit Doval, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha, Directors General of CRPF, BSF, CISF, ITBP and the SSB are present in the meeting. The Amarnath Yatra will begin on the 3rd of July and conclude on the 28th of August. The Information and Broadcasting Ministry has released the Draft Telecommunication Rules 2026 pertaining to television, radio and related services for public consultation. The draft rules have been framed to consolidate the various guidelines issued for television and radio services under the previous Telegraph Act 1885 within the framework of the newly enacted Telecommunications Act 2023. The National Testing Agency, NTA, has extended the examination window by 15 minutes from 180 minutes to 195 minutes for re-NET UG 2026, scheduled to be held on the 21st of this month. The new timings will be 2 p.m. to 5:15 p.m. The revised examination window includes the time required for mandatory examination formalities such as signing of attendance sheets and other invigilation procedures. In Pakistan-occupied Kashmir POK, 16 people were killed and 37 others wounded as Pakistani army opened fire from AK-47 rifles on thousands of unarmed protesters in Eidgah ground yesterday. Although the demonstration started peacefully, demanding affordable flour, rice, electricity and basic rights, the scene soon turned violent, with the Pakistani army unleashing gunfire on the crowd. Around 60 to 70,000 people had assembled in Rawalkot to raise slogans against Pakistan's continued occupation and policies in the region. United Nations Secretary General Antonio Guterres and Secretary General of the International Maritime Organization IMO Arsenio Dominguez has condemned the attack on a Palau-flagged tanker off the coast of Oman in which three Indian seafarers have been killed. Spokesman for the UN Chief Stefan Dujarric said Mr. Guterres is deeply concerned by the continuing escalation. Renowned Indian shooting coach and former Asian Games gold medalist Jaspal Rana died at the age of 49 at a private hospital in New Delhi today. He mentored Manu Bhakkar and helped her secure a historic double bronze medal at the 2024 Paris Olympics. President Draupadi Murmu expressed sadness over the passing of Jaspal Rana. Prime Minister Narendra Modi has also expressed grief at the passing away of Jaspal Rana. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8% up in afternoon trade today. The Sensex advanced 653 points to 74,486, while the Nifty rose 160 points to 23,322 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 1:10 हो रहे हैं और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम एक ही फिल्म से का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा में प्रेम कहानियां तो बहुत बनी, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो फिल्म ख़त्म होने के बाद भी लंबे समय तक हमारे साथ रहती हैं। कहते हैं कुछ मुलाकातें किस्मत लिखती हैं और कुछ रिश्ते वक्त से भी बड़े होते हैं। आज जिस फिल्म की बात हम करने जा रहे हैं उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा प्रेम जो बिछड़ता है, इंतज़ार करता है लेकिन हार नहीं मानता है और फिर किस्मत उसे दोबारा मिलाने का रास्ता खोज ही लेती है। आज हम बात कर रहे हैं राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी 1967 की चर्चित फिल्म मिलन की, जिसका निर्माण किया था दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्म मेकर LV प्रसाद ने। फिल्म के लेखन में अथरैया मुलापुड़ी, अदुरुति सुब्बा राव और वीरेंद्र सिन्हा का योगदान रहा। यह फिल्म 1963 की चर्चित तेलुगु फिल्म मूगा मानसूल का हिंदी रूपांतरण थी। खास बात यह है कि दोनों फिल्मों का निर्देशन अदुरुति सुब्बा राव ने ही किया था। अपनी ही फिल्म को दूसरी भाषा में दोबारा बनाकर उसे भी उतना ही सफलता दिलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। प्रेम, विश्वास और पुनर्जन्म के ताने बाने से बुनी गई मिलन उस दौर की उस चुनिंदा फिल्मों में से थी जिसने दर्शकों को सिर्फ भावुक ही नहीं किया बल्कि उन्हें ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि शायद कुछ रिश्ते सचमुच जन्मों के लिए बने होते हैं। तो दोस्तों, अगले 29 मिनट 30 सेकंड तक मेरे साथ बने रहिए और चलिए निकल पड़ते हैं फिल्म मिलन के उस सफर पर जहां प्यार, संगीत और यादें हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रही है। इस सफर का आगाज करते हैं फिल्म के एक बेहद सुरीले और दिल को छुलाने वाले गीत के साथ।
1: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर शोर शोर। हाँ।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। और आज की जो हमारी फिल्म है वो है मिलन, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, अब जिक्र करते हैं मिलन के कलाकारों की। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे सुनील दत्त, नूतन, यमुना, प्राण और देवेन वर्मा। वहीं सहयोगी कलाकारों में थे सुरेंद्र, श्यामा मुकरी, लीला मिश्रा और डेविड अब्राहिम जैसे अनुभवी कलाकार, जिन्होंने अपने छोटे छोटे लेकिन अहम किरदारों से कहानी को और मजबूत बनाया। अगर बात करें नूतन की, तो वो अपने सहज और स्वाभाविक अदाकारी के लिए जानी जाती हैं। मिलन में उन्होंने राधा का किरदार निभाया। राधा की मासूमियत, उसकी भावनाएं, उसके मन का दर्द, उसका प्रेम, नूतन ने इन्हें इतने सादे और असरदार अंदाज में निभाया कि राधा का किरदार दर्शकों के दिलों में उतर गया। वहीं बात करें सुनील दत्त की, तो उस समय अपने गंभीर और दमदार भूमिकाओं के लिए पहचाने जाते थे, लेकिन मिलन में उन्होंने गोपी नाम के एक भोले भाले नाविक का किरदार निभाया। उनके इस सरल और भावुक रूप को दर्शकों ने खूब पसंद किया, और ये किरदार आज भी उनकी यादगार भूमिकाओं में गिनी जाती है। एक ख़ास बात ये भी है कि फिल्म में नूतन और सुनील दत्त दोनों दोहरी भूमिकाओं में नजर आए थे। 1960 के दशक में नूतन और सुनील दत्त की जोड़ी दर्शकों के लिए काफ़ी लोकप्रिय थी। मिलन में दोनों की सादगी भरी केमिस्ट्री और भावनात्मक दृश्यों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। यही वजह है कि मिलन दोनों कलाकारों के करियर की यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म की सफलता के पीछे इसकी कहानी और संगीत के साथ साथ इन दोनों कलाकारों की शानदार जुगलबंदी का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं इसी फिल्म से एक और प्यारा सा गीत।

आकाश में दिल्ली के इन द बेस्ट चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है बहुचर्चित फिल्म मिलन। दोस्तों अब बात करते हैं मिलन की कहानी की। मिलन की कहानी शुरू होती है राधा देवी और गोपीनाथ की शादी से। शादी के बाद दोनों घूमने निकलते हैं और एक नदी पार करते समय गोपीनाथ को अचानक कुछ अजीब अजीब याद आने लगता है। वह बीवी जी, एक पुराने महल और एक लड़की गौरी की बातें करने लगता है। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आती है। गोपी तुरंत उसे गौरी के रूप में पहचान जाता है और वो भी उसे पहचान लेती है और बताती है कि इस जीवन में साथ रहने के लिए ही तुम दोनों ने पुनर्जन्म लिया है। वह उनकी कहानी सुनाना शुरू करती है। यहीं से फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। पिछले जन्म में गोपी एक सीधा साधा नाविक था जो गंगा किनारे अपनी दादी के साथ रहता था। वहीं राधा एक जमींदार की बेटी थी। रोज नदी पार करते करते दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन जाता है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं लेकिन समाज और हैसियत की दीवारें उनके रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। इसी बीच राधा की शादी किसी और से तय हो जाती है। राधा अपने मन की बात कह नहीं पाती और अपनी किस्मत मानकर शादी कर लेती है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ही समय बाद वो विधवा होकर अपने मायके लौट आती है। उधर गोपी हमेशा की तरह उसका सहारा बनता है। दोनों के बीच का अपनापन लोगों को खटकने लगता है और गांव में तरह तरह की बातें होने लगती है। तब हालात बहुत मुश्किल वाले हो जाते हैं। तब राधा और गोपी साथ रहने का फैसला करते हैं और गांव छोड़कर निकल पड़ते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। नदी पार करते समय उनकी जो नाव थी वो भंवर में फंस जाती है और दोनों की मौत हो जाती है, लेकिन सच्चा प्यार फिर जन्म लेता है। इसके साथ ही फिल्म फ्लैशबैक से बाहर आती है वर्तमान समय में। बूढ़ी हो चुकी गौरी उन्हें बताती है कि वे दोनों उसी अधूरे प्रेम को पूरा करने के लिए इस जन्म में फिर से मिले हैं। गौरी उन्हें विवाहित जोड़े के रूप में देखकर खुश होती है और अपने गोपीनाथ के हाथों में दम तोड़ देती है। यही है मिलन की कहानी, एक ऐसा प्रेम कहानी जो बिछड़ना जरूरी है लेकिन ख़त्म नहीं होता। एक ऐसा प्रेम जो समय, समाज और जन्म मृत्यु की सीमाओं से भी आगे निकल जाता है।

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, मिलन की कहानी जितनी दिल को छू लेने वाली थी, उनका संगीत भी उतना ही मधुर और यादगार था। इस फिल्म का संगीत उस समय का सबसे बड़ा USP था। फिल्म का संगीत दिया था प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। उनके शानदार संगीत को दर्शकों और समीक्षकों ने खूब पसंद किया। गीत लिखा था मशहूर गीतकार आनंद बख्शी ने। फिल्म के गीतों में कठिन उर्दू या साहित्यिक हिंदी के बजाय आनंद बख्शी ने बेहद सरल भाषा का प्रयोग किया था। उनके इसी सरल शब्दों का जादू ने मिलन के गीतों ने उनके करियर को नई ऊंचाइयां दी और उन्हें हिंदी फिल्मी जगत के सबसे सफल गीतकारों में शामिल कर दिया। वहीं अगर आवाज़ों की बात करें तो लता मंगेशकर और महान गायक मुकेश की जोड़ी ने इन गीतों को गाया। यही वजह है कि मिलन के गीत आज भी सुनने वालों के दिलों में वही ताजगी और मिठास खोल देते हैं जो लगभग 6 दशक पहले घोला करते थे। इस फिल्म का एक गाना, आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं, को लंबाई ज़्यादा होने की वजह से बाद में फिल्म से हटा दिया गया। इस फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग गोदावरी नदी और उसके तट के इर्द गिर्द हुई थी और उस साल ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। तो चलिए चलते हैं एक और गीत की ओर।
1: मुबारक हो सबको समाये सुहाना,

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। और आज की जो फिल्म है वो है मिलन। अब हमारे पास हमारे श्रोताओं के लिए

सारे मेल आ गए हैं, उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। पहला मेल आया हीरामणि वर्मा दंतरेगी भाटापारा से, और ये है नेहरू चौक से अनीता जाधव, सोनल प्रसाद, और ये है सुरेश जी का, और ये है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा और पूनम गगनेजा का, वडिंगा खेड़ा पंजाब से मिंटू, पिंकी और आरती का, और गांव नथाना पंजाब से हरिजिंदर छिंदा, जसवीर, सीता और गीता का। और ये मेल आया है हमारे पास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की, और ये लिखते हैं आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, गाना जानकारी रोचक किससे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, उत्तम और बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। और ये है गांव हीरावली वाली फजीका पंजाब से सुभाष, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु, और हिमांशु हैं ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, और ये हैं भूषण खेड़ा, विष्णु खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी, और इनके साथ हैं टीवा नशी खेड़ा फजीका पंजाब से, और ये हैं नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक और अंकु राघव, और ये हैं सुर संगम रेडियो श्रोता वीरमगांव गुजरात से अजीत भावसागर, प्रमिला बहन, भावेश कुमार, सनी, जैमिनी कुमार और हेतल जैन, कृष्णा जैन, राकेश जैन इनके साथ जुड़े हुए हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा और पूजा परिहार है। आज आपका आप जो चर्चा कर रहे हैं अपने दौर 1966 की बेहतरीन फिल्म मिलन, ये 67 की फिल्म है मिलन, जिसके अभिनय किया था सुनील दत्त और नूतन जी ने, बिल्कुल सही बात। और ये है संबलपुर फाकरे से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। तो श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मिलन को हिंदी सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में गिना जाता है जिनकी कहानी, अभिनय और संगीत तीनों ने मिलकर एक अमिट छाप छोड़ी। तो दोस्तों आज हमने बात की उस फिल्म की जिसने प्यार, बिछड़न और पुनर्जन्म की कहानी को बड़े ही खूबसूरत ढंग से पर्दे पर उतारा, साथ ही याद किए इसके वो मधुर गीत जो आज भी सुनने वालों के दिलों में बसे हुए हैं। तो चलिए कार्यक्रम का आखिरी गीत भी सुन लेते हैं।

श्रोताओं, उम्मीद है पुनर्जन्म और अमर प्रेम की इस अनोखी कहानी का ये सफर आपको पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी हिंदी सिनेमा के किसी और सुनहरे किस्से के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए और आप अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा गीत, गुनगुनाते रहिएगा संगीत, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के 1:40 होने वाले हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि औरतां विज्ञान शासन ते नवीनता विच भारत दे विकास नूं अग्गे वधा रहीआं ने। राष्ट्रीय प्रीख्या एजेंसी ने नीट यूजी 2026 विच प्रीख्यार्थियां प्रति सुखावें बदलाव पेश कीते, म्याद वधाई ते लेआउट नूं सोधिआ। गृहमंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा दीआं तैयारियां बारे उच्च पद्धरी मीटिंग दी प्रधानगी कीती। सरकार ने संस्थागत ते व्यापारक खरीदारां दे प्रचून पंपां तों ईंधन खरीदण ते रोक लाई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्याज की खरीद की समीक्षा की, यकीनी कीमत विच सोध की थी। औरतां दा आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप आज तो शुरू हो रहा है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज इस गल ते जोर दिता है कि माली समावेश अते उद्यमशीलता तो लैके सिख्या, सेहत संभाल, सैनीटेशन, रिहायश, खेडा, विज्ञान ते शासन तक औरतां वख-वख खेतरां विच प्रमुख भूमिका निभा रही ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी वर्गे उभर रहे खेतरां में औरतों की बढ़ रही हिस्सेदारी मौकों के नवे राह खोल रही है ते देश भर में विकास नूं बदल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में एनडीए सरकार ने औरतों की अगवाई वाले विकास नूं अगे वधाउण लई काम कीता ते इह सारे खेतरां विच दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूहों की सरगर्मी नाल हमायत कर रही है जो औरतों नूं माली तौर ते स्वतंत्र बनाउण विच बहुत अगे वध रहे ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मान, मौके ते शक्तिकरण ते आधारित सरकार दे यत्नां ने एक अजिहा माहौल बनाउण विच मदद कीती है जिस विच औरतां अपनी पूरी समर्था नूं महसूस कर सकण अते राष्ट्र निर्माण विच वधेरे मजबूती नाल योगदान पा सकण। श्री मोदी ने भारत दी नारी शक्ति दे विज्ञान, पुलाड़ ते नवीनता वर्गे खेतरां विच अपनी छाप छड्दे होए देख के खुशी प्रगटाई। उन्होंने कहा कि देश की नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की नींह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश दी मावां, भैणां ते धीआं अज हर खेतर विच अपनी असाधारण प्रतिभा ते हुनर नाल भारत माता दी शान वधा रहीआं ने। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 21 जून होने वाली नीट यूजी मुड़ परीक्षा लई परीक्षा की म्याद 15 मिनट वधा के 195 मिनट कर दी है। नवा समा दोपहर बाद 2 बजे तो शाम 5:15 तक होगा। सोधी हुई परीक्षा की म्याद विच लाजमी परीक्षा अमला लई लोड़ींदा समा शामिल है। एजेंसी ने कहा कि यह सुधार पिछले कई साल तो उम्मीदवारों तो प्राप्त फीडबैक के आधार ते किए गए ने। एजेंसी ने भी कहा कि इस गल नूं यकीनी बनाउण लई वचनबद्ध है कि नीट यूजी प्रीख्या उम्मीदवारां दीआं जरूरतां मुताबिक निरपक्ष, सुरक्षित अते जवाबदेह ढंग नाल कारवाई करे। पेश एक रिपोर्ट।
2: एजेंसी ने प्रश्न पत्र दे नाल प्रदान कीती जाण वाली रफ वर्कशीट नूं 2 पन्नियां तो वधा के 4 पन्नियां तक कर दिता है। इह सुधार इस फीडबैक तो बाद कीता गया सी कि पुराना लेआउट कुछ विद्यार्थियां खास करके खब्बे हथ नाल लिखण वाले विद्यार्थियों लई असुविधाजनक सी। एनटीए ने कहा कि प्रीख्या डिजाइन विच छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण प्रीख्या दौरान उम्मीदवारां दे अनुभव ते चंगा प्रभाव पा सकदे ने, इस लई इह उपाय लागू कीते गए ने जदों की निरपक्षता अते सुरक्षा दे सर्वउच्च मियारां नूं बनाई रखा जाता है। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वह दाखला कार्ड और जानकारी बुलेटिन में दी गई हदायतों को ध्यान नाल पढ़न और प्रीख्या के सुचारू संचालन लई प्रीख्या स्टाफ नाल सहयोग करन। ब्यूरो रिपोर्ट्स नाल आकाशवाणी खबरां लई जलंधर तो मैं राजेश बाली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवी दिल्ली विच श्री अमरनाथ यात्रा लई तैयारियां दी समीक्षा करन वास्ते एक उच्च पद्धरी मीटिंग दी प्रधानगी कर रहे ने। फौज मुखी जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर दे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी अते एसएसबी दे डायरेक्टर जनरल मीटिंग विच मौजूद ने। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई नूं शुरू होगी ते 28 अगस्त नूं संपूर्ण होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार असाम ते नागालैंड वल्लों दस्तखत कीता गया 3 धिरी समझौता उत्तर पूर्व विच दहाकियां तो चल रहे विवाद नूं खत्म कर देगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्होंने कहा कि समझौता खेतर विच तेल ते गैस दी भाल लई राह खोलेगा। उन्होंने अगे कहा कि समझौता भारत की एकता की एक मिसाल वजो खड़ा है जिथे दोवे राज ऊर्जा पक्षों आत्म निर्भर भारत के दृष्टिकोण नूं साकार करने लई विवादां नूं छड्ड दिंदे ने। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਈਂਧਣ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਾਨਕ ਈਂਧਣ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਲੀਟਰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਨੇ। ਇਸ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੈ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਏ @EIRR ਜਲੰਧਰ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੇਮ 2026 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਕਾਨੂੰਨ 1885 ਤਹਿਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2023 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

0: maintaining the highest standards of fairness and security. Candidates are advised to read the instructions given in the admit card and information bulletin carefully and cooperate with the examination staff for the smooth conduct of the examination. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: The Information and Broadcasting Ministry has released the draft Telecommunication Rules 2026 pertaining to television, radio and related services for public consultation. The draft rules have been framed to consolidate the various guidelines issued for television and radio services under the previous Telegraph Act 1885 within the framework of the newly enacted Telecommunications Act 2023. The Supreme Court today dismissed the writ petition filed by Congress member Meenakshi Natarajan challenging the rejection of her Rajya Sabha candidature from Madhya Pradesh. The Supreme Court declined to interfere with the returning officer's decision, rejecting her nomination for the Rajya Sabha elections over the alleged non-disclosure of a criminal case in Telangana. A bench comprising Justice Prashant Kumar Mishra and Justice A.S. Chandurkar observed that once a returning officer rejects a nomination paper, the statutory remedy available to an aggrieved candidate is to approach the Election Commission. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron will jointly inaugurate the Bharat Innovates Summit in Nice, France on Sunday. Talking to Akashvani News, Ambassador of India to France Sanjeev Singla said, "The idea is to showcase some of India's best deep tech talent outside of India that has been curated by the Ministry of Education." He informed that there are over 120 deep tech startups covering 13 areas which have been selected from over 1,200 startups.
2: Prime Minister would be here on the 14th of June. Both President Macron and Prime Minister Modi would be inaugurating Bharat Innovate Summit in Nice, which is the largest ever deep tech event being held by India outside of India. The idea is to showcase some of India's best deep tech talent outside of India that has been curated by Ministry of Education. There are 120 deep tech startups covering, I think, 12 or 13 areas, which have been selected from over 1,200. And some of these startups cover critical areas when it comes to sustainable development, blue economy, or next generation manufacturing, next generation communication.
1: The Prime Minister is scheduled to visit Nice, France on the 14th of June as the first stop of his two-nation European tour covering France and Slovakia. The visit carries special significance as it will be his first bilateral summit with President Emmanuel Macron since the two nations elevated their ties to a special global strategic partnership in February this year. United Nations Secretary General Antonio Guterres and Secretary General of the International Maritime Organization IMO Arsenio Dominguez has condemned the attack on a Palau-flagged tanker off the coast of Oman in which three Indian seafarers have been killed. Spokesman for the UN chief, Stefan Dujarric, said Mr. Guterres is deeply concerned by the continuing escalation. Meanwhile, Secretary General of IMO has underscored the need to protect seafarers, civilian shipping, and the freedom of navigation at all times.
3: We also know that there's been some ships that have been hit, notably the Citadel tanker that was hit, and a number of Indian seafarers were killed, and that is an attack that was clearly condemned by the Secretary General of the International Maritime Organization, and we fully support and second that language.
1: The two-day BRICS Agriculture Ministers Conference began today in Indore, Madhya Pradesh. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan welcomed all delegates and stressed on carrying forward the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, the idea that the whole world is one family. He said under Prime Minister Narendra Modi's leadership, India's approach is built on peace over war and cooperation over conflict. The minister said the country's total food production has risen to nearly 376 million tons. In Pakistan-occupied Kashmir POK, 16 people have been killed and 37 others wounded as the Pakistani army opened fire from AK-47 rifles on thousands of unarmed protesters in Eidgah ground. Although the demonstration started peacefully yesterday, demanding affordable flour, rice, electricity and basic rights, The scene soon turned violent with the Pakistani army unleashing gunfire on the crowd. Around 60 to 70,000 people had assembled in Rawalkot to raise slogans against Pakistan's continued occupation and policies in the region. The demonstrators were demanding justice for the 30 people who were killed and 200 injured in clashes between protesters and security forces in POK on Tuesday. Renowned Indian shooting coach and former Asian Games gold medalist Jaspal Rana has passed away. He was 49. According to National Rifle Association of India President Alikesh Narayan Singh Deo, Rana breathed his last at a Delhi hospital last night. A report.
4: Born in Uttarkashi, Uttarakhand, Rana leaves behind a legacy that spans more than three decades as a shooting legend and national coach. He won multiple medals at the Asian Games and Commonwealth Games. Rana won a gold medal at the 1994 Milan World Championship in the junior category with a world record score, announcing his arrival on the global stage at the age of just 18. Jaspal has been widely credited as the man behind ace shooter Manu Bhakar's rise in the sport. Apart from Bhakar, Rana worked closely with several leading pistol shooters including Saurabh Chaudhary, Anish Bhanwala and Chinki Yadav. He was awarded the Arjuna Award in 1994, the Padma Shri in 1997 and the Dronacharya Award in 2020. Indian shooting has lost one of its finest ambassadors, athlete, mentor and sports journalism has lost a knowledgeable guide. Sayukta Yadav, Akashwani News, Delhi.
1: President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and other leaders have expressed grief at the passing away of Jaspal Rana. In FIFA World Cup 2026, South Korea defeated the Czech Republic 2-1 in a thrilling Group A clash today, earning valuable 3 points at Estadio Akron in Mexico's Zapopan. South Korea will next take on co-host Mexico, while the Czech Republic will look to bounce back against South Africa in a Group A clash. Today, co-hosts Canada will be up against Bosnia-Herzegovina in a Group B clash of Toronto Stadium. The match will start at 12:30 a.m. Indian Standard Time. In badminton, India's PV Sindhu stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney today. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Su Yu 21-6, 21-9 in a one-sided quarterfinal clash. The India Meteorological Department, IMD, has said a wet spell is likely to continue over northwest India till tomorrow, with the possibility of thunderstorms and gusty winds and hailstorms. According to IMD, conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, parts of West Bengal, Bihar, some parts of Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand and Uttar Pradesh during the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaspal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia-Herzegovina in Group B clash in Toronto. With that, we end the midday news.
5: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
5: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
7: काफ़ी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज़्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर ला के हम एक मंच पर हम रख रहे हैं।
5: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक

लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से

0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपये और प्रतिमाह 24 लाख रुपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर

0: सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हुआ है आपके पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम एक ही कलाकार। आदाब, सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए आपके अपने दोस्त और होस्ट इस कार्यक्रम की रैना तंवर का खुशनुमा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम एक ही कलाकार में। और आज जैसा कि कार्यक्रम के बारे में आप जानते ही हैं, हम बात करते हैं किसी एक कलाकार की, फिल्मी जगत से जुड़े हुए किसी भी कलाकार के बारे में। तो आज हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा की उस अदाकारा को जिनकी अदाकारी ने 60 के दशक में धूम मचा दी थी। जी हाँ, हम नाम नहीं बताएंगे। हिंदी सिनेमा में हर कोई अपनी पहचान बनाने का मोहताज होता है, लेकिन कुछ हीरे ऐसे होते हैं जो सदियों तक अपनी चमक बरकरार रखते हैं, युगों युगों तक उनके नाम के चर्चे कायम रहते हैं। जी हाँ, आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी हस्ती और ऐसी नगीना से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपने अभिनय के अलावा अपनी हेयर स्टाइल से भी लोगों को बहुत लोकप्रिय रही, बहुत ही दिल को लुभाने वाली रही। मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता गेस कर चुके होंगे, तो देर किस बात की, हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वो आपको पहचानना है, क्योंकि रहना है तो कुछ तो आपको कहना है। तो गेस कीजिए और हमें बताइए कि किसकी हम बात कर रहे हैं। ईमेल आईडी है ip.radiodelhi@gmail.com। आपके मैसेज का, संदेश का हमें रहेगा इंतजार। तब तक सुनते हैं ये वाला इनका गीत।

जी हाँ, आप सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आ चुके हैं, बहुत सारे मैसेज हमें आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम को पसंद करने का। और सबसे पहले जिसने पहचाना और हमें मैसेज किया, उनका सही जवाब उन्होंने दिया और शो के हमारे फेवरेट श्रोता का खिताब भी आज उन्होंने लिया। उनका नाम है धर्मेंद्र छिपा जी, भोपालगढ़ राजस्थान से। धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार को बहुत बहुत बधाई। वैसे हमारे सभी श्रोता हमारे फेवरेट हैं। तो हम बात कर रहे हैं जिनकी, वो है साधना शिवदसानी। यस, 2 सितंबर 1941 को पाकिस्तान के कराची में जन्मी अभिनेत्री साधना अपने माता पिता की अकेली संतान थी। बंटवारे के बाद उनका पूरा परिवार मुंबई आ बसा और अभिनेत्री के पिता को उस समय साधना बोस बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने अपनी पसंद का नाम उन्हें दिया, अपनी बेटी को दिया। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि अभिनेत्री साधना का कपूर खानदान से भी रिश्ता है। जी हाँ, और साधना के पिता और एक्ट्रेस बबीता के पिता हरीश शिवदसानी सगे भाई थे। तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे, आपके मैसेज हमें आते रहेंगे, इसी तरह से प्यार बांटते रहिए, भेजते रहिए और सुनते हैं अगला ये नगमा।

मेरा झुमका, यस मेरा भी झुमका गिरा रे। मुझे इस गाने में बहुत ही मज़ा आता है और मैं बहुत डांस करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे श्रोता भी इस गाने को पसंद कर रहे होंगे और थोड़ा सा ठुमका तो उन्होंने भी लगाया होगा। खैर, हम बात कर रहे हैं, साधना ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी और साधना अभिनेता राज कपूर की फिल्म श्री 420 में एक गाना मुड़ मुड़ के ना देख के कोरस में भी नजर आई थी। इसके दो साल बाद फिल्म अम्बाणा में लीड रोल में काम किया और बाद में प्रोड्यूसर शदाधर मुखर्जी की नज़र साधना की मैगजीन पर उनकी तस्वीरों पर पड़ी और उन्होंने साधना जी को पहला मौका अपनी फिल्म लव इन शिमला में दिया। और इसी तरह से हमें बहुत सारे मैसेज आप कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिग्दर्शन कविता गौड़ जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें मैसेज किए और इसी तरीके से हमें मैसेज करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज और इसी तरीके से हमें मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं ये वाला नगमा।

और जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें मेजबान मैं रैना तंवर आप लेकर आई है एक प्रतिभाशाली अदाकार साधना शिवदासानी जी को। तो मेल करना ना भूलें और बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं से ही हम अपना कार्यक्रम में सुधार करेंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमें भी ये एक उत्साह मिलता है कि हम आपके लिए एक अच्छा कार्यक्रम लेते आएं हमेशा के लिए। तो जहां तक हम साधना के हेयर स्टाइल के पीछे एक भी बहुत प्यारी सी कहानी है, कहते हैं ना कि हर चीज़ के पीछे कुछ कहानी होती है, तो साधना के हेयर स्टाइल के पीछे भी एक अनकही कहानी छुपी है। दरअसल शूटिंग के दौरान डायरेक्टर आर के नैयर ने अभिनेत्री का माथा छिपाने के लिए हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑडी हेपबर्न की तरह साधना जी का हेयर स्टाइल कटवा दिया। इसके बाद तो ये हेयर स्टाइल इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों ने तो इसका नाम ही साधना कट रख दिया और इसके प्रभावित होकर बहुतों ने कट भी करवाए। यहाँ तक कि मैं सच बताऊँ, मैं अपना भी सच बताना चाहती हूँ कि मैंने भी स्कूल टाइम में अपने जो हेयर स्टाइल है बिल्कुल साधना जी की तरह कटवा लिए थे और लोग मुझे ना साधना कहकर संबोधित करने लगे थे और ये मेरे लिए बड़े ही गौरव की बात रही। और खैर छोटे मुंह बड़ी बात बोल दी, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी की तरह करते हैं और लोग हमें उससे संबोधित करते हैं। खैर आप बताइए, आप में से किस किस ने ऐसी कटिंग करवाई या अपने बच्चों की करवाई, क्योंकि इससे इंस्पायर होकर बहुत लोगों ने करवाई थी जैसे मैंने करवाई। तो हमें मेल करके बताएं और हमारा ईमेल आईडी ipradiodali@gmail.com आपके मैसेज का रहेगा हमें इंतज़ार इस गाने के साथ।

जी हाँ, हमें भी यहाँ बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और बहुत तरीके से पसंद भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बात करें उनके निजी जीवन के बारे में, तो अभिनेत्री साधना जी की शादी फिल्म निर्देशक आर के नैयर जी से हुई थी और उन्होंने 7 मार्च 1966 को शादी की और उनकी प्रेम कहानी फिल्म लव इन शिमला के सेट में शुरू हो गई। शादी के बाद भी साधना शिवदसानी ने फिल्मों में काम किया और इनकी जो खूबसूरत जोड़ी है ना, वो 30 साल तक बनी रही। 1961 के क्लासिक फिल्म हम दोनों में देव आनंद के साथ उनकी प्रेमिका की भूमिका को लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया और हमें भी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। इतने सारे मैसेज हमें भेज रहे हैं, जैसे कि अजीत भावसार, प्रमिला बेन भावसार, भवेश जमीन और हेतल जैन, कृष्णा जैन, राकेश जी का भी मैसेज हमारे पास आया है। हरजिंदर शिंदा मतलब गांव पंजाब से, हरजिंदर, जसवीर और सीता गीता ने हमें मैसेज किया है। ऐसे रवि कुमार जी ने हमें मैसेज किया है, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुर कीरत और गुर शब्द सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें मैसेज करने के लिए। अब बढ़ते हैं हम अगले इस गीत, प्यारे से गीत के साथ, सुनते हैं ये नगमा।

और इसी तरह से सप्रेम नमस्कार हमारे श्रोताओं को, क्योंकि अब बहुत सारे हमें मैसेज आ रहे हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी जी का मैसेज आया है, और इसी तरह से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीत गुरशब्द का मैसेज आया है, और फिर राजेश वर्मा जी का हमें मैसेज आया है, और वहीं तुलसी मस्कीन जी का, उन्होंने हमें बहुत बधाई दी है, हमारे सॉन्ग उन्हें पसंद आ रहे हैं, कार्यक्रम उन्हें अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। शादरा से, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव सिघान खुराना, और अगर हम किसी का नाम लेना भूल जाएँ तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, अगली बार ज़रूर लेंगे। और इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सरोहर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद और कालंदी, इसी तरीके से हमें फारूक अली खान जी का भी मैसेज आया है, फरहान, फारिया, ताहिरा, हमारे बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी प्यार का। और इसी तरीके से हमें अजीत भावसर, प्रमीला बेन भावसर, भावेश सैनी, जैमिन कुमार, जैल हैतल, कृष्णा जैन, राकेश जैन जी का भी मैसेज आया, स्वर्ण सिंह का भी मैसेज आया, दलजीत राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज जी का मैसेज आया है, और इंद्रभान, अनुभव, ऋषभ हमने बताया है, इनके मैसेज हमारे पास आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेज करने का। और हम बात कर रहे हैं जैसे साधना जी की, तो उनकी आखिरी फिल्म उल्फत की नई मंजिल थी, और 2002 में उन्होंने आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उन्हें सम्मानित किया गया। अंतिम दिनों में साधना जी आखिर का कहते हैं ना कि बहुत ही उनकी ज़िंदगी अधूरी, गुमनामी सी रही, आखिरकार 25 दिसंबर 2015 को मुंबई में उनका निधन हो गया। इसी खूबसूरत याद के साथ मैं, यानी रैना तंवर, लेती है इस कार्यक्रम से इजाज़त। इस कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए कलाकार, एक नई कहानी के साथ, तो सुनना न भूलें। और हर आवाज़ कुछ कहती है मेरे दोस्त, ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों। जाते जाते एक नेक काम, एक नेक बात हमेशा, कि आप एक अच्छे नागरिक बने, मेट्रो में जाएं तो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, यानी कि बुज़ुर्गों को सीट दें, जिनकी ज़रूरत है उन्हें सीट दें, जो बीमार लगे उन्हें सीट दें, एक अच्छे और सभ्य नागरिक बने, दूसरों के चेहरे पर दें मुस्कुराहट, और आप अपने दिल को मिलता है सुकून, क्योंकि जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हैं तो हमें मिलती है खुशी, और ये खुशी बांटना अच्छा होता है दोस्तों। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे नई कहानी, नए कलाकार के साथ। इस गीत से लेते हैं विदा।

0: अभी आप सुन रहे थे एक ही कलाकार।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, टीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर दोपहर के 3 बज रहे हैं और ये वक्त है हमारे नए शो का यानी मैटिनी मेलोडीज का। और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी और मेरे साथ है मेरी और आपकी दोनों की दोस्त
2: रेना तवर।
1: तो दोस्तों आज के 3 बजे के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए
2: जी। और राखी, जिंदगी बड़ी खूबसूरत होती है। ये नज़रिया हमें बदलना होगा कि यार हम क्यों इतने उदास हैं, हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है, क्योंकि ज़िंदगी में ना बहुत सारे बहाने मिल जाएंगे हमें नेगेटिव होने के, लेकिन एक बहाना पॉजिटिव होकर ढूंढिएगा तो आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट रहेगी और जिंदगी में भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल रहना, ये बात बिल्कुल तुमने सही बोली। अक्सर हम क्या करते हैं कि अपने आसपास अपने जो दोस्त यार हैं, अपने परिवार रिश्तेदारों के बीच में जब हम होते हैं तो हम अक्सर उनकी कमियां ढूंढते हैं, ठीक है ना, कमियां ढूंढते हैं कि अरे उसने ये नहीं किया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा कहा। लेकिन अगर हम इन कमियों को नज़रअंदाज करें और उनकी अच्छाइयों को देखें तो हर इंसान हमें अच्छा लगने लगेगा, खूबसूरत लगने लगेगा और इवन हम अंदर से भी खुश नज़र आएंगे। क्योंकि जब हम दूसरों के बारे में बुरी बातें करते हैं ना, तब हमारे अंदर भी इरिटेशन और क्या होता है कि मेंटल टेंशन होती है। और इसके साथ साथ
2: है ना, तुम्हें चार उंगली, एक उंगली अगर किसी पे उठाते हो तो चार उंगली हमारी तरफ भी होती है।
1: बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज की जो अभी सिनेरियो है, जो अभी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो मेंटल ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी आपको बीमारी भी हो सकती है ना।
2: बिल्कुल। तो बीमारी क्यों लेनी भाई,
1: क्यों लेनी है। तो चलिए इसी बात पर हम आपको सुनवाते हैं अंदाज फिल्म का ये गीत, जो कि है किशोर कुमार की आवाज में।
2: जी

0: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
1: कार्यक्रम
0: मैटरनी
1: मेलोडीज।
0: ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तुमने कभी किसी का इंतजार किया है क्या?
1: बहुत बार किया है यार, बहुत बार। वैसे अक्सर ना लोग इंतजार पे रह ही जाते हैं, इंतजार करते रह जाते हैं, सोचते हैं कि वो पहले बोले, अब वो बोलेगा। मगर ये बोलना बोलने में ही ना पूरा समय निकल जाता है और चिड़िया उड़ जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखो, एक बात बताएं, इंतज़ार बहुत सारी चीज़ों का होता है। कभी कभी कुछ पाने का इंतज़ार, कोई कभी कभी किसी को होता है ना कि जॉब लगने का इंतज़ार होता है कि जॉब लग जाएगी तो उसे बड़ी खुशी मिलेगी। कभी कभी किसी के आने का इंतज़ार होता है, और कभी कभी इंतज़ार होता है किसी उस सपने का जिसके लिए दिन रात हम सपना देखते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो तुम किसी का सपना अभी तक देखी हो?
1: हाँ, सच बताएं या झूठ बताएं?
0: सच
1: बता रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल हमने इंतज़ार किया है, और वो इंतज़ार भी बड़ा मीठा लगता है ना। लेकिन देखिए दोस्तों, प्रतीक्षा ज़्यादा ना करें, तो इंतज़ार में ही ना बैठे रहें। चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो नौकरी का हो या किसी भी चीज़ का, अवसर मिले तो उसे गैप यानी कि फटाफट
0: बिल्कुल
1: मिला लें।
0: बिल्कुल। और इंतज़ार करना अच्छी बात है, बट इंतज़ार के बाद अगर वो चीज़ ना मिले तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है।
1: बिल्कुल नहीं।
0: क्योंकि अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली है तो शायद उससे बेहतर कुछ मिलने वाली है, बेहतर नौकरी, बेहतर कोई
1: अपना।
0: तो इसलिए इंतज़ार करें, लेकिन दुखी
1: बिल्कुल
0: ना हो।
1: चेहरे पर मुस्कुराहट रखें और ये गाना गुनगुनाएं।
0: बिल्कुल। और ये गाना है आराधना फिल्म से, और ये भी गाना है किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ यानी राखी बैनर्जी और रैना तनवर के साथ, और ये जो आप शो सुन रहे हैं ये है मैटनी मेलोडीज। तो श्रोताओं,
1: वैसे आज मन क्या कह रहा है?
0: देखो यार, मन तो मेरा अभी फिलहाल थोड़ा सा सुस्त था जब स्टूडियो में आ रही थी, लेकिन जैसे ही श्रोताओं से बात करने का मौका मिलता है और सॉन्ग सुनने का मन मिलता है तो अपने आप थोड़ी सी क्या बोलते हैं सुस्ती गायब हो जाती है।
1: तभी हम श्रोताओं को भी सुस्त हटाने के लिए यहाँ आते हैं ताकि वो भी मन से ना खुश हो जाएं। और मुझे यकीन है कि हमारे श्रोता बहुत खुश रहेंगे हमारे कार्यक्रम को सुनकर। और मन ना एक बड़ा चंचल होता है, कभी मन कहता है कि कहीं चलें, कभी मन कहता है उदास हो जाता है, मन से सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। लेकिन दोस्तों, मन को काबू जरूर रखें क्योंकि मन से सब कुछ होता है। अगर मन से आप हार मान लेंगे तो आप हार गए, और मन से अगर आप जीत मान लेंगे तो आप जीत गए। चाहे वो किसी का दिल जीतना हो या अपनी जिंदगी में किसी को पाना हो या अपनी मंजिल जॉब हो या कुछ भी हो, मन से सब कुछ होता है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
0: तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए और अपने मन को स्ट्रांग रखिए। जिंदगी के किस हालात, किसी भी तरह के हालात में आपको लगेगा कि ये वक्त मेरे लिए बहुत वीकनेस वाला है, कमज़ोर है, और इस वक्त मेरे लिए कुछ भी नहीं सामने दिख रहा है, लेकिन उस समय भी बस एक बात याद रखिएगा कि जो भी होगा बेहतर होगा। तो बस उस बेहतर के इंतज़ार कीजिए और अपना जो काम है, अपना जो आपका कर्म है वो करते रहिए,
1: और मन को हमेशा पॉजिटिव रखें इस गाने की तरह।

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल और उस पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम मैटिनी मेलेडी। और मैं हूँ रैना तवर और मेरे साथ हैं
1: राखी बैनर्जी।
0: तो राखी, एक बात और, दुनिया में सबसे पहले दिल तक पहुँचने का रास्ता क्या है?
1: देखो, मुझे तो दो ही दिखता है,
0: अच्छा
1: एक नज़र और दूसरा पेट।
0: बिल्कुल सही। अगर नज़र कभी अनजान को अपना बना देती है तो कभी बरसों से,
1: और कभी कभी बरसों की खामोशी को एक पल में बयां कर देती
0: तो
1: है।
0: नजरें कितनी कामयाब वाली काम करती है ना, कि हम कुछ ना
1: बिल्कुल
0: भी कहें तो नजरें हमारी बयां कर देती हैं हम क्या चाह रहे हैं,
1: बिल्कुल, गुस्सा भी नजरों में ही दिखता है, प्यार भी नजरों में ही दिखता है।
0: और जब किसी खास से नजर मिल जाए तो
1: प्यार
0: सचमुच होश उड़ जाते हैं कुछ इस तरह।

0: तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ पर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम मैटिनी मेलेडी, और मैं रैना तंवर और मेरे साथ है राखी बनर्जी। हम लेकर आए हैं बहुत प्यारी सी बातों के साथ गीतों की बहार, और मुझे लगता है आपको गाने और गीत और हमारी बातें दोनों ही पसंद आ रही होंगी। तो अपनी प्रतिक्रिया हमें लिखकर भेजें तो हमें अच्छा लगेगा। हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com।
1: और बिल्कुल, आप हमें ज़रूर लिख के भेजिए कि ये शो आपको कैसा लग रहा है, ये जो हमने नया शो आपके लिए किया है वो कैसा लग रहा है।
0: तो कहते हैं कभी कभी प्यार की खूबसूरती उतनी गहराई में नहीं जिस उसकी सादगी में छिपी होती है।
1: और जानती हो, जब कोई रिश्ता बहुत खास हो जाता है तो उसमें एक मीठी सी झिझक भी होती है, एक अनकहा सा डर भी कहीं ना कहीं इस खूबसूरत एहसास में नजर आने लगता है।
0: बिल्कुल, और नाजुक जज्बातों का बेहद खूबसूरती से जो बयां करते हैं कुछ ऐसे नगमे भी हमारे पास होते हैं।
1: तो तुम क्या सुनाने वाली हो इस बार?
0: आप सुनते हैं फिर गेस करते हैं, है ना?
1: बिल्कुल।

0: तो दोस्तों, कहते हैं कि कुछ गीत ऐसे होते हैं जो शुरू होते ही हमें बीते दौर की खूबसूरत यादों में ले जाते हैं, और जब बात 60 के दशक की हो तो प्यार, शरारत और दिल की बेचैनी को शब्दों में पिरोने का अंदाज ही कुछ अलग होता है।
1: बिल्कुल सही बोला तुमने ये। और अगला गीत जो हम लेने ले रहे हैं इसमें, वो कुछ ऐसे ही दिलकश एहसासों से सजा है।
0: कौन सा है?
1: किसी अपने के जाने की आहट और उसे रोक लेने की मासूम सी चाहत को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान करता है ये सदाबहार नगमा। आज भी उतना ही पसंद

0: तो हम लेते हैं इस कार्यक्रम से विदा। हम अगली बार फिर मिलेंगे नए और पुराने, मतलब पुराने गीतों के साथ।
1: और रैना, ये जो सॉन्ग है ना बेकरार कर कि हमें यूं ना जाइए, और हमें भी जाने का मन नहीं, अपने श्रोताओं को छोड़ के, लेकिन जाना पड़ेगा। और हम फिर हाजिर होंगे फिर नए प्रोग्राम के साथ, नए गीतों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी राखी बैनर्जी को
0: और रैना तवर को दीजिए इजाज़त। मुस्कुराते रहें, चेहरे पर दे मुस्कुराहट, दूसरों के भी ऐसा काम नेक जरूर करें।
1: तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं,
0: नमस्कार।

सामिन, अभी आप हज़रत अमीर खुसरो का कलाम सुन रहे थे। फ़नकार थे जाफ़र हुसैन ख़ान बदायूनी और उनके हमनवा। सामिन, गज़लिया कव्वाली सूफ़ी मौसीकी का एक ऐसा रिवायती अंदाज़ है जो इश्क़ हकीकी और खुदा से मोहब्बत के जज्बात को बयान करता है। गज़लिया कव्वाली में सूफ़ी फ़लसफ़े के अनासिर नुमाया होते हैं। गज़लिया कव्वाली में आमतौर पर इश्क़ हकीकी का तसव्वुर मरकज़ी मकाम रखता है। गज़लिया कव्वाली एक ऐसा फ़न है जो इश्क, मोहब्बत और मार्फत का पैगाम देता है। गज़लिया कव्वाली मानो एक रूहानी सफ़र है। आइए सुनते हैं चांद अफजाल और उनके हमनवाओं की आवाज़ों में कव्वाली।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

인투텔이 광보电台 听众 방금은 现在我们播送 Justin 唱的 Cassie 明天歌曲请收听

印度特里广播电台，听众朋友们，这次普通话节目播送到这里，谢谢收听，再会。

0: खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता और आज मेरे साथ है मेरे सहयोगी
2: वसीम अहमद।
1: मैं और वसीम मिलकर आज आपको ले चलेंगे खेल जगत के सफर पर, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए हर एक खेल की अलग अलग तरह से यहां पर ताजा जानकारी। और इस कार्यक्रम की शुरुआत क्यों ना सबसे पहले उस खेल से हो जाए जिसके बारे में चर्चाएं बहुत लंबे समय से चल रही थी और लगातार हम आकाशवाणी पर भी उसकी बारे में बता रहे थे। तो मुझे लगता है वसीम शायद आप समझ ही गए होंगे कि हम किस खेल की बात कर रहे हैं।
2: जी हाँ, बात हो रही है गेंद की, ट्राइओंडो की, बात हो रही है फुटबॉल की।
1: जी हाँ, तो फुटबॉल का महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप फाइनली शुरू हो चुका है एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में और मुकाबले भी खेले जाने शुरू हो चुके हैं। लेकिन कल जो है यानी 11 जून को इसकी ओपनिंग सेरेमनी के साथ मुकाबले हुए। तो चलिए आपको ले चलते हैं पूरी ही विस्तृत जानकारी की ओर। फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ फीफा विश्व कप 2026 का आगाज मैक्सिको सिटी के ऐतिहासिक स्टेडियम में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। रंग संगीत, संस्कृति और खेल भावना के अद्भुत संगम ने दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों का स्वागत किया। समारोह में शकीरा, बर्ना बॉय और कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी, जबकि मैक्सिको की पारंपरिक कला और लोक संस्कृति को भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। ये विश्व कप कई मायनों में ऐतिहासिक है। पहली बार टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 104 मुकाबले यहां खेले जाएंगे, जो अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप है। इसके मेजबान 3 देश हैं, मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा। चलिए अब कुछ रोचक तथ्यों पर नजर डालते हैं। स्टाडियो एस्टेका दुनिया का पहला स्टेडियम बन गया जिसने 3 अलग अलग फीफा विश्व कप के उद्घाटन मैचों की मेजबानी की है, 1970, 1986 और अब 2026 में। इसी मैदान ने पेले और डिएगो माराडोना जैसे महान खिलाड़ियों के ऐतिहासिक क्षण भी देखे हैं। उद्घाटन मुकाबला मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया, जिसके साथ ही अगले एक महीने तक चलने वाले इस वैश्विक फुटबॉल उत्सव की शुरुआत हुई। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर शानदार शुरुआत की। मुकाबले के 9वें मिनट में जूलियन ने विपक्षी रक्षा की गलती का फायदा उठाते हुए पहला गोल दागा और मैक्सिको को बढ़त दिलवाई। इसके बाद 67वें मिनट में अनुभवी स्ट्राइकर राउल हिमेनेज ने हेडर के जरिए दूसरा गोल करके टीम की जीत लगभग तय कर दी। मैच में थोड़ी सी अनुशासनहीनता भी देखने को मिली। दक्षिण अफ्रीका के स्पेफेलो सिथोले और थेम्बा जुआने को रेड कार्ड दिखाया गया, जिसके वजह से टीम 9 खिलाड़ियों तक सिमट गई। वहीं इंजरी टाइम में मैक्सिको के सीजर मोंटेस भी रेड कार्ड पाकर मैदान से बाहर हो गए। घरेलू दर्शकों के जबरदस्त समर्थन के बीच मैक्सिको ने टूर्नामेंट की विजय शुरुआत की और ग्रुप ए में महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल कर लिए। अब मैक्सिको का अगला मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका चेकिया के खिलाफ वापसी की कोशिश करेगा। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप ए में दक्षिण कोरिया और चेकिया के बीच अहम मुकाबला मैक्सिको के ग्वाडलाहारा स्टेडियम में खेला गया। दोनों टीमों के लिए टूर्नामेंट का पहला मैच था और जीत के साथ अभियान शुरू करने का शानदार मौका भी। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने शानदार वापसी करते हुए चेकिया को 2-1 से हरा दिया। मैक्सिको के ग्वाडलाहारा में खेले गए इस मुकाबले में पहला हाफ गोल रहित रहा। हालांकि दक्षिण कोरिया ने गेंद पर ज्यादा नियंत्रण बनाए रखा। दूसरे हाफ में चेकिया ने 59वें मिनट में कप्तान लादिस्लाव टेची के हेडर की बदौलत बढ़त हासिल कर ली, लेकिन दक्षिण कोरिया ने हार नहीं मानी। 67वें मिनट में मिडफील्डर वांग इन बोम ने शानदार गोल करके स्कोर 1-1 कर दिया। वांग इन बोम मैच के हीरो रहे, जबकि कप्तान ने भी इस मैच में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ दक्षिण कोरिया ने ग्रुप ए में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है, जबकि 20 साल बाद विश्व कप में लौटी चेकिया को पहले ही मैच में निराशा हाथ लगी। और अब 12 जून को होने वाले ग्रुप बी और ग्रुप डी के पहले दौर के मैचेस पर नजर डाल लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे दिन मैदान पर वो टीमें उतर रही हैं जिनका इतिहास और आंकड़े काबिले तारीफ हैं। सबसे पहले बात ग्रुप बी की, जहां मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया से होगा। आपको बता दें कि कनाडा ने 36 साल के लंबे इंतजार के बाद 2022 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तो किया था, लेकिन वो ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब वो फीफा रैंकिंग के अपने बेहतरीन दौर और घरेलू मैदान के दम पर इतिहास बदलना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बोस्निया की टीम अपने पुराने जांबाजों के दम पर यूरोपीय क्वालिफायर्स की लय को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। और श्रोताओं, इस ग्रुप का दूसरा मैच रोमांच की सारी हदें पार कर देगा, क्योंकि एशियाई चैंपियन कतर की भिड़ंत यूरोप के जांबाज टीम स्विट्जरलैंड से होने वाली है। कतर के लिए ये मैच किसी भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। 2022 में ही अपनी सरजमी पर वो एक भी मैच नहीं जीत पाए थे और ग्रुप स्टेज में सबसे नीचे रहे थे, लेकिन इस बार उनके पास फीफा रैंकिंग में टॉप 15 के करीब रहने वाली और लगातार नॉकआउट खेलने वाली अनुभवी स्विट्जरलैंड टीम को चौंकाने का मौका है। इसके बाद एक्शन शिफ्ट होगा लॉस एंजलिस, जहां ग्रुप डी में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का मुकाबला पैराग्वे से होगा। अमेरिकी टीम 2022 में नीदरलैंड्स के खिलाफ राउंड ऑफ 16 में पहुंची थी। उनकी युवा और ऊर्जावान गोल्डन जनरेशन अब दुनिया की टॉप टीमों में शुमार हो चुकी है, लेकिन पैराग्वे की टीम को कम आंकना भूल हो सकती है। इस साउथ अमेरिकी टीम का डिफेंस इतिहास में बड़ी बड़ी टीमों के पसीने छुड़ा चुका है। तो श्रोताओं, क्या कतर अपना पहला वर्ल्ड कप पॉइंट हासिल कर पाएगी? क्या यूएसए अपनी सरजमी पर जीत का परचम लहराएगी? इसका जवाब तो आपको बस कुछ ही घंटों बाद मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए फीफा वर्ल्ड कप के इस रोमांच के साथ आकाशवाणी पर।

0: तो यहाँ पर हमने बात की वसीम फीफा वर्ल्ड कप की, और इतना ज्यादा मुझे तो ये सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि काश मैं भी वहां उस मैदान पे पहुंच ही जाऊं और ये सारे मुकाबले देख लूं।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ तक कि भारत में भी करोड़ों फुटबॉल प्रेमी हैं। भले ही भारत में मैच के टाइमिंग बहुत ही अजीबोगरीब हैं, लेकिन उत्साह देखते हुए बन रहा है।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि उत्साह जो है वो देखते हुए ही बन रहा है, और ऐसे ही उत्साह की ओर हम फिर से आपको लेके चलेंगे, क्योंकि आज से एक और ऐसा ही रोमांचित खेल जो है वो शुरू होने वाला है, और मुझे लगता है कि सभी क्रिकेट प्रेमियों को उसकी अभी दरकार है और जरूरत भी है और इंतजार भी है। हम बात कर रहे हैं
1: क्रिकेट की, बिल्कुल सही कहा आप। 2025 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम की जीत के बाद अब नजरें हैं T20 वर्ल्ड कप जो कि इंग्लैंड में शुरू हो रहा है।

जैसा मेरे सहयोगी वसीम ने आपको बताया वही चीज हम आपको बताने वाले हैं। और आज इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हो गई है। फाइनली 12 जून यानी आज से इंग्लैंड की सरजमी पर शुरू हो रहा है आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का महासंग्राम। 2001 में शुरू हुआ महिला T20 वर्ल्ड कप का ये 10वां संस्करण है, जहां पहले केवल कुछ ही टीमें इस संस्करण में हिस्सा ले पाती थी, वहीं इस बार ये टीमें 12 हो चुकी हैं। तो आज पहले ही दिन ओपनिंग मैच में मेजबान इंग्लैंड का सामना करने उतर रही है श्रीलंका की टीम बर्मिंघम के ऐतिहासिक अजबेस्टन मैदान पर।

0: तो जिस तरह से ये जो मुकाबले हैं ये खेले जाएंगे, ये अपने आप में एक रोमांचित करने जैसा है, क्योंकि पहला मुकाबला जब कोई टीम खेलती है तो एक रोमांच अलग से होता है और उस पर प्रेशर भी ये होता है कि कैसे इस पहले मैच को हम जीत में बदलें। तो अगर इन दोनों ही टीमों के T20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन की बात करें तो एक दिलचस्प तथ्य सामने आता है कि इंग्लैंड ने महिला T20 का पहला वर्ल्ड कप जो कि 2009 में हुआ था वो अपने नाम किया था, वहीं श्रीलंका की महिला टीम ने 2009 से 2024 तक किसी भी महिला T20 वर्ल्ड कप में दूसरे दौर में जगह भी नहीं बनाई। लेकिन पिछले कुछ समय में कप्तान चमारी अठपट्टू की अगुवाई में इस टीम ने पूरी दुनिया को चौंकाया है और हालिया इतिहास गवाह है कि श्रीलंका ने इंग्लैंड को उन्हीं के घर पर T20 सीरीज में हराकर उलटफेर किया था। ऐसे में आज जहां इंग्लैंड की नेट साइबर ब्रंट अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर पुरानी हार का बदला लेना चाहेंगी, वहीं श्रीलंकाई शेरनिया एक और बड़ा धमाका करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। अजबेस्टन की ये पिच रनों से भरपूर रहने वाली है, यानी कि चौको छक्कों की बरसात तो यहाँ होना तय है। वसीम,
1: बिल्कुल कविता, यह मुकाबला आज भारतीय समय अनुसार रात्रि 11 बजे से शुरू होगा
0: और इसी पर हमने बात की है इस मुकाबले पे और भारत के, क्योंकि भारत का मुकाबला भी होना है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। फिलहाल हमने बात की है फॉर्मर क्रिकेटर वैशाली माथुर से, क्या कहा है उन्होंने, आइए सुनवाते हैं।
2: आज के ओपनिंग मैच के लिए मैं यही कहूंगी कि दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट, जो बेटर खेलेगा जो बेटर फील्डिंग करेगा वही इस मैच को जीतेगा आज, और जो इस मैच को जीतेगा वही आगे कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे मैच में भी खेल पाएगा। भारतीय टीम को ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ, जो 14th वर्ल्ड कप मैच है एंड ये वर्ल्ड कप भी हम अपने नाम करें, क्योंकि इस टीम में अगर देखा जाए तो हर एज कैटेगरी के बच्चे और प्लेयर्स खेल रहे हैं एंड सभी एक्सपीरियंस है कि अगर कोई छोटा है एज में लेकिन वो भी एक्सपीरियंस है। अगर हम बात करें शेफाली वर्मा, वो हम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसके बाद हम बात करते हैं दीप्ति शर्मा की, 15 इयर्स का एक्सपीरियंस एज अ इंडियन टीम के साथ में वो बहुत मैटर करता है इस वर्ल्ड कप पे। अगर उसके साथ अगर मैं भारतीय फुलमाली की बात करूं, वो अभी अपना पहला मैच खेल रही है वर्ल्ड कप का, लेकिन मैं यही कहूंगी कि जो अभी तक उनका मैंने रन्स और हाईएस्ट रन्स देखे हैं उसके अकॉर्डिंग वो काफी अच्छा करती हुई आई है और इंडिया ए टीम में भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया था। तो मैं यही कहूंगी कि भारतीय फुलमाली को कि अगर उनको मौका मिलता है तो उससे चूकना नहीं है, उसको ग्रैब करना है।
0: रोमांच कैसा होगा
2: अगर हम आप बात करें कि टीम पहले कम थी और अभी ज्यादा है, तो ऑफकोर्स हर एक प्लेयर जो इंडिया से खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, जो क्रिकेट का जुनून रखता है, तो ऑब्वियसली वो हर एक फैन चाहेगा कि टीम बढ़े गर्ल्स की और बॉयज के साथ साथ उनको भी उतना ही अचीवमेंट अभी और मिले। एंड इस जो एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये वर्ल्ड कप जो स्टार्ट हुआ है, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी भारतीय टीम की लड़कियां नहीं बल्कि हम खेल रहे हैं, तो हमें उस तरीके से अपना जितना भी अभी तक हमने सीखा और अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे और उस एक्सपीरियंस से हम विकेट चटकाएंगे और चौके छक्कों की बारिश करेंगे, तभी ये वर्ल्ड कप हमारे हाथ आएगा। और जैसे हमने देखा भी है अभी तक कि हमारी शेफाली वर्मा और स्मृति मंदना की जो ओपनिंग की बारी होती है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होती है, लेकिन उसके बाद नीचे में हमारी रिचा घोष भी संभालती है और जेमिमा भी संभालती है। बात करें अगर बॉलर्स की, तो बॉलर्स में भी एक से एक जुलूंदर हमारे बैठे हुए हैं। मैं यही कहूंगी कि ये पैक टीम है, जैसे लास्ट टाइम पैक टीम थी वैसे ही उससे बेटर वे में पैक टीम है। ऑल द बेस्ट।

0: और यहाँ क्रिकेट की बातों को ही जारी रखते हुए अब चलते हैं इसी में यानी T20 वर्ल्ड कप में ही होने वाले कल के मुकाबलों के बारे में बताएंगे। अब आपको पहला मुकाबला 13 जून को स्कॉटलैंड वर्सेस आयरलैंड के बीच खेला जाएगा जो भारतीय समय के अनुसार 3 बजे से होगा। और स्कॉटलैंड ने अपना पहला वर्ल्ड कप 2024 में खेला और उनकी टीम अपने पहले दौर के 4 मैचेस हार गई थी। वहीं आयरलैंड अब तक 4 वर्ल्ड कप खेल चुकी है और अपने खेले गए 17 मैच में एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई। ये मैच रोमांचक होगा क्योंकि दोनों ही टीमें महिला T20 वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत के लिए एक दूसरे को कड़ी चुनौती देंगी। दूसरा मुकाबला शाम 7 बजे से होगा और ये सारे जो मैचेस हैं इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इन दोनों टीमों ने अब तक ये दूसरा मैच है जिसमें अब तक हुए 9 मैच जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप में खेले हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बना और साउथ अफ्रीका 2 बार उपविजेता बना। 13 जून का तीसरा मैच हैम्पशायर में खेला जाएगा 11 बजे से वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच होगा ये मैच। और इन सभी टीमों के साथ मुझे लगता है कि कुछ टीम ऐसी हैं जो इस बार अपने आप को एक्चुअली प्रूव करने के लिए उतरेंगे और उन्हीं में से हमारी भी एक टीम है भारतीय महिला टीम जो कि पूरे जोर शोर से वसीम मुझे लगता है कि यहां पर इस वर्ल्ड कप को भी अपने नाम करने के लिए बिल्कुल उतारू होगी क्योंकि हमने देखा कि ओडीआई में हमने ट्रॉफी उठाई है और उस ट्रॉफी के साथ साथ जो एक रोमांच है ना और एक जो प्रेशर है वो दूसरी टीमों पर भी उतना ही बनता है। तो अब क्रिकेट की खबरों को ही जारी रखते हैं और चलते हैं अपने सहयोगी वसीम के पास।
1: कविता, भारतीय महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का शुरुआती मैच कब और किससे हो रहा है, श्रोताओं को ये भी बताइए।
0: जी हाँ, हमारा पहला मुकाबला खेला जाएगा चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान

आधार प्रदान करती है, क्योंकि जनगणना सर्वेक्षण द्वारा मकानों की स्थिति, सुविधाएं एवं संपत्तियां, धर्म, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, भाषा, साक्षरता एवं शिक्षा, आर्थिक गतिविधि जैसे विभिन्न मानकों पर सूक्ष्म स्तर के आंकड़े उपलब्ध कराती है। एकत्रित किए गए आंकड़े अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे राष्ट्र की योजना और विकास के लिए डेटा की आवश्यकता को पूरा करते हैं। वर्तमान जनगणना सर्वेक्षण विशिष्ट और उल्लेखनीय है, क्योंकि सर्वप्रथम जनगणना सर्वेक्षण डिजिटल उपकरणों से किया जाएगा। इसमें जो भी प्रगणक होंगे वे विशिष्ट मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करके परिवारों से आंकड़ों का संग्रहण करके स्वयं के स्मार्टफोन से उसको एकत्रित रखेंगे। इसके साथ ही परिवारों को एक निर्दिष्ट वेब पोर्टल के माध्यम से सब गणना का विकल्प भी उपलब्ध करवाया जाएगा। जनगणना सर्वेक्षण 2027 दो चरणों में पूरा किया जाएगा। सर्वेक्षण के प्रथम चरण अर्थात मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के समय प्रगणक मुख्य रूप से मकानों की स्थिति, परिवारों की उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित आंकड़े एकत्र करेंगे। इनके लिए उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार 34 प्रश्न बनाए हैं, जो वे घर घर जाकर मकानों को एक नंबर देंगे और उसके अंदर रह रहे निवासियों से जाकर वे प्रश्न पूछेंगे। इस प्रकार जो प्रथम चरण होगा उसमें मकान सूचीकरण और मकानों की जो स्थिति है उस पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। भारत की जनगणना अपनी समृद्ध परंपरा के कारण विश्व की सर्वश्रेष्ठ जनगणनाओं में से एक मानी जाती है तथा यह विश्व के सबसे बड़े प्रशासनिक कार्यों में शामिल है। जनगणना सर्वेक्षण भारत के संविधान की सूची अनुच्छेद 246 के कर्म संख्या 69 पर अंकित है तथा जनगणना अधिनियम 1948 इसके संचालन का विधिक आधार प्रदान करता है। भारत में प्रथम जनगणना सर्वेक्षण सन 1872 में हुआ था, जो देश के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर संपन्न हुआ था। वर्ष 1881 में पहली बार संपूर्ण देश में एक साथ जनगणना सर्वेक्षण किया गया। इसके पश्चात 2011 तक प्रत्येक 10 वर्ष में बिना किसी व्यवधान के जनगणना होती रही, तथापि COVID-19 महामारी के कारण यह सर्वेक्षण 2021 में नहीं हो पाया था, जो अब 2026 में शुरू होकर 2027 तक चलेगा। श्रोताओं, इस समय हमारे देश में जनगणना सर्वेक्षण किया जा रहा है, जो मुख्यतः दो चरणों में संपन्न होगा। प्रथम चरण 1 अप्रैल से सितंबर 2026 से शुरू होगा, जिसमें मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना होगी। दूसरा चरण फरवरी 2027 में आयोजित होगा। इसमें देश के हर व्यक्ति की वास्तविक गिनती की जाएगी और उनके व्यक्तिगत विवरण जैसे उम्र, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय और जाति से जुड़े विस्तृत आंकड़े जुटाए जाएंगे। श्रोतागणों, सरकार जब भी कोई सर्वेक्षण देश में कराती है तो प्राप्त सूचना के आधार पर देशवासियों के लाभ के लिए आवश्यक आधारभूत स्तर की जानकारी प्रदान करती है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, पंचायतों एवं अन्य स्थानीय निकायों की सीटों का परिसीमन किया जाता है।

0: इस प्रकार सर्वेक्षण के दौरान केवल जानकारी एकत्रित नहीं की जाती, बल्कि उन जानकारियों के आधार पर देश की प्रगति और विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती है। इस समय जो जनगणना सर्वेक्षण हो रहा है, उसमें मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यह मानव बस्तियों की स्थिति, आवासीय कमी और आवासीय आवश्यकताओं के संबंध में आंकड़े प्रदान करता है, जो आवास नीतियों के निर्माण में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त यह परिवारों में उपलब्ध सुविधाओं एवं परिसंपत्तियों से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराता है, जिसकी आवश्यकता केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों तथा अन्य गैर सरकारी एजेंसियों को विकास एवं योजना निर्माण के लिए होती है। सरकार समय समय पर अनेक सर्वेक्षण कराती है, ताकि देशवासियों की वास्तविक स्थिति से सरकार परिचित हो सके, प्रधानमंत्री देश के प्रत्येक व्यक्ति से आकर बात कर सके ऐसा संभव नहीं है। अतः वे समय समय पर सर्वेक्षण के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं, ताकि देशवासियों के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसी के अनुसार योजनाएं बना सके। अतः प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह सर्वेक्षण में भली भांति भूमिका अदा करे, उचित आंकड़े जुटाए और देश के विकास और समृद्धि में योगदान दे।
1: प्रियंका बहन, अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे, ये वार्ता वार्ता का विषय था ग्रामीण सर्वेक्षण और डेटा का हमारे विकास में महत्व। वार्ताकार थी सुमन वर्मा, प्रवक्ता राजकीय उच्चतर महाविद्यालय माध्यमिक विद्यालय गुरुग्राम।
2: बिल्कुल, और देखिए सर्वेक्षण बड़ा ही ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारे को पता सरकार को पता चलता है सही आंकड़ों से, और फिर वो अपनी नीतियों को बनाते हैं देश के विकास के लिए, उन्हें सही तरीके से क्रियान्वित कर पाते हैं।
1: हाँ।
2: और अगर हम सरकारी नीतियों की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसी योजना है जिसके ज़रिए सभी बच्चों को जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के, उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है, और इसे एक मौलिक अधिकार भी बना दिया गया है। इसके साथ साथ नए स्कूल खोलना, मौजूदा जो स्कूल है उनमें क्लासरूम, शौचालय और पीने के पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ सभी लिंग और सामाजिक समानता बनाए रखने के लिए जो हाशिए पे जो वर्ग है उन्हें भी समानता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया है,
1: बिल्कुल।
2: और शिक्षा की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे कि बच्चे अपने भविष्य में काबिल बन सकें।
1: बिल्कुल प्रियंका बहन, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी। और अब हम भाइयों का कराते हैं मनोरंजन, सुनवाते हैं करमबीर की आवाज़ में ये रागनी।

0: तो प्रियंका बहन, अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे, ये रागनी कलाकार थे करमबीर वर्मा।
1: और इसी रागनी के साथ हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को,
0: राम राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है और जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी है। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया है। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। दक्षिण कोरिया में सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मोदी सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने ये बात कही।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ, जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
1: भारत की बौद्धिक और सभ्यतागत विरासत की सुरक्षा की दिशा में ज्ञान भारतम मिशन को ऐतिहासिक पहल बताते हुए श्री

0: शेखावत ने कहा कि इस मिशन के तहत सरकार ने राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है। ये साक्षात्कार अब से कुछ देर में 7:10 पर हमारी विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के में प्रसारित किया जाएगा। भारत एआई मिशन ने आज वारिया नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम।
0: देखिए लोकेंद्र भाई, जब कहते हैं ना कि मौसम के अनुसार अगर हम अपना खान पान रखते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभकारी होता है, और अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में पसीना खूब आता है, तो हमें ऐसी सब्जियों का चयन करना चाहिए, ऐसे फलों का चयन करना चाहिए जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो, जैसे कि बेल वाली सब्जियाँ हैं, लौकी, तोरई, खीरा, कद्दू, इनमें भरपूर मात्रा में पानी भी होता है, इसके साथ साथ पचाने में भी आसान होती है और हमारे शरीर को हाइड्रेट भी रखती है।
1: बिल्कुल प्रियंका बहन, उसके साथ साथ देखिए फल सब्जियों और मिलेट्स की भी हम बात कर लें कि हमारे स्वास्थ्य में स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये पोषक तत्वों का प्रमुख स्रोत होता है और शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। फलों और सब्जियों में विटामिन, खनिज और फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में विभिन्न बीमारियों से बचाव भी करते हैं। अगर मिलेट्स की बात की जाए जिसे श्री अन्न भी कहा जाता है, ये जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी ये सब अनाज शामिल हैं और ये इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मिलेट्स में नियमित सेवन मधुमेह, मोटापा और हृदय संबंधी रोगों का को जोखिम भी कम किया जाता है इनसे।
0: बिल्कुल, इसके साथ साथ अधिक से अधिक पेय पदार्थ आप ले सकते हैं, जैसे नारियल का पानी ले सकते हैं, नींबू का पानी ले सकते हैं, बेल का शरबत ले सकते हैं, और जैसे आप अधिक से अधिक, और वैसे भी आप घर से जब भी निकले तो पानी की बोतल साथ में लेकर ज़रूर निकले, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़रूरी होता है कि हम पानी पीते रहें और जो थकावट है वो हमें ना हो पाए, क्योंकि गर्मियों में देखा जाता है कि बहुत जल्दी थकान भी हो जाती है। तो खाने पीने का और हर तरीके से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, समय पर उठें, समय पर सोएं, इस तरीके से अगर आप अपनी दिनचर्या रखेंगे तो आपका दिन अच्छा रहेगा और फिर आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगे।
1: बिल्कुल प्रियंका बहन,
0: और देखिए कृषि जगत कार्यक्रम में हम अपने किसान साथियों के लिए जानकारियां भी लेकर आते हैं, इसी हम एक बातचीत लेकर आए हैं। खेत बचाओ अभियान में इफ्को एमसी की भूमिका, इसमें जानकारी दे रहे हैं मनोज वार्ष्णेय, प्रबंध निदेशक इफ्को एमसी, और इनसे बातचीत कर रहे हैं पीएस भाटी। तो सुनते हैं ये बातचीत।
2: किसान बहनों भाइयों, ये तो आप जानते हैं इफ्को किसानों की संस्था है, और भाई इफ्को किसानों की संस्था के साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं एक सहयोगी संस्था है इफ्को एमसी, जो किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद देती है, प्रदान करती है, और ये उत्पाद हैं जो भी कोई बीमारी लगती है किसानों तक पहुंचाती है। क्या कुछ काम चल रहा है और एक भारत सरकार का अभियान चला है खेती बचाओ, इसमें इफ्को एमसी की क्या भूमिका, आइए इन सब बातों की विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं इफ्को एमसी के प्रबंध निदेशक मनोज वार्ष्णेय जी। मनोज जी, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे किसान भाइयों को आप क्या बताना चाहेंगे जिससे खेती बचाओ अभियान में आप उनको भी जागरूक कर सकें?
3: नमस्कार किसान भाइयों, इफ्को मित्सुबिशी कॉरपोरेशन का संयुक्त उद्यम जिसको इफ्को एमसी के नाम से जाना जाता है, कृषि रसायनों की श्रृंखला आप लोगों को उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है, और मुझे बहुत खुशी है कि इस संस्था ने ऑलरेडी पिछले साल 10 वर्ष कंप्लीट कर लिए।

और अब इस साल व्यापार में कार्यरत हैं। आपके इस सहयोग के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि इफको एमसी के कुछ विषय जिन पे काम करता है और उनको बहुत आसान तरीके से अगर समझा जाए तो मैं सिर्फ चार शब्दों में इफको एमसी की भूमिका को आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले है सही दवा। सही दवा मतलब आपके कृषि उत्पादन को बचाने के लिए जिन कृषि रसायनों की ज़रूरत पड़ती है, हम सभी उच्च कोटि के कृषि रसायनों को आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करती है इफको एमसी। सही दवा के बाद दूसरा है सही दाम। बाजार में जितने भी कीटनाशक या कृषि रसायन मिलते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों से दाम चार्ज किए जाते हैं, और इफको एमसी का जो पूरा उद्देश्य है, आपको सही दवा सही दाम पे उपलब्ध कराई जाए। तीसरा, इसमें सबसे अगर खास बात देखा जाए तो सबसे ये है कि इफको एमसी के सारे उत्पाद फिक्स्ड एमआरपी पे उपलब्ध कराए जाते हैं। फिक्स्ड एमआरपी से आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती। जो दाम उसके ऊपर अंकित है, उसी दाम को आपको दुकानदार को या सहकारी संस्था को पे करना है, तो जिससे आपको सही दवा सही दाम पर उपलब्ध होती है। साथ में तीसरा चीज़ है उच्च गुणवत्ता। उच्च गुणवत्ता मतलब जितने भी कृषि रसायन हैं, इफको एमसी की क्वालिटी पॉलिसी है। तो अगर हम इन तीन चीज़ों को देखा जाए, सही दवा सही दाम उच्च गुणवत्ता, ये तीन ध्येय हैं इफको एमसी के किसान को और आपकी खेती के संरक्षण को, जो भी आपकी मेहनत है उस मेहनत को बचाने के लिए हम कार्यरत हैं। और इन सब के साथ एक और अनूठा पैगाम है इफको एमसी का, किसान सुरक्षा। इफको एमसी के कोई भी उत्पाद लेते हैं आप, उस पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिलता है। 16,000 रुपये तक के उत्पाद इफको एमसी के अगर आप खरीदता है कोई एक किसान, तो उन उत्पाद खरीदने पे करीब 1 लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दुर्घटना बीमा जो है किसान को मिलता है। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरत है आपके पास, आपके पास एक बिल होना चाहिए, और इसकी जो समय सीमा है पूरा 1 साल है। 1 साल में आप टोटल 16,000 रुपये के अगर उत्पाद खरीदते हैं, 1 लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो इन सब आधारों के ऊपर इफको एमसी खड़ा है, और हमें बहुत हर्ष है कि इफको एमसी ने पिछले साल 2025-26 में रिकॉर्ड टर्नओवर किया था। तो इसमें आप सब लोगों का प्यार, आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार इफको एमसी को इतना पसंद करने के लिए। रही बात खेती बचाओ अभियान, जैसे इस समय ग्लोबल वॉर सिचुएशन की वजह से कृषि रसायनों के दाम में काफ़ी इजाफा हुआ है, तो हम अपनी कंपनी की तरफ से प्रयास कर रहे हैं जैसे भी करके आपके उत्पादन कॉस्ट को, आपकी खेती की लागत को कैसे कम रख सकें। तो इसमें हमारा जो प्रयास है, हम समय से कृषि रसायनों को या उनके टेक्निकल्स को या फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट को टाइमली परचेज कर रहे हैं, उनकी गुणवत्ता को देखते हुए आपको उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको आने वाले समय में आपके कृषि उत्पादन में कोई भी तरीके की समस्या ना आए। तो ये ऐसा इफको एमसी का इस समय प्रयास चल रहा है। और आने वाले समय में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा, वो ये है कि आज के समय में जैविक उत्पादों की बहुत ज़रूरत आ रही है। मार्केट इंक्रीज हो रहा है और बहुत अच्छे अच्छे जैविक उत्पाद मार्केट में मिल रहे हैं, तो इसी श्रृंखला में इफको एमसी ने भी अपने जैविक उत्पाद बाजार में उतारे हैं, और जिनका नाम है जेन नेक्सा। जेन मतलब बैलेंस और नेक्सा मतलब नेक्स्ट इन एग्रीकल्चर। तो जेनेक्सा श्रृंखला को बाजार में उपलब्ध कराया है, तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह है जेनेक्सा सीरीज के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, जिससे कृषि रसायनों के साथ साथ जैविक उत्पादों का, जिसको बोलते हैं बायो इंटीग्रेटेड क्रॉप प्रोटेक्शन की इस कॉन्सेप्ट को, जिससे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिला सकें। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जेनेक्सा श्रृंखला के उत्पादों का भी प्रयोग करें अपनी खेती में। इसी में एक उत्पाद है माइकोजेन। माइकोजेन जो एक बहुत ही उच्च कोटि का माइकोराइजा प्रोडक्ट है। हमें पता है आज के समय में खादों की उपलब्धता में यूरिया और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता के चैलेंज हैं, तो अपनी फसल के पोषण को प्रोटेक्ट करने के लिए माइकोजेन जैसे प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से माइकोराइजा जड़ों के ऊपर एक बाहरी और एंडोमाइकोराइजा डेवलप होने की वजह से आपके पास फायदा क्या होगा कि
कम पोषक तत्व उपलब्ध होने के बावजूद फसल को पोषक तत्वों की कमी महसूस नहीं होने देगा और साथ में आपके उत्पादन पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव

0: प्रभाव देगा, तो मुझे आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इन ऐसे जैविक उत्पादों का आप इस्तेमाल करें, और जिससे खाद की रहने वाले संकट को या खाद की कमी या उसकी कम उपलब्धता को भी आप एड्रेस कर सकें। रही बात आने वाले समय में किस तरीके का प्रोडक्शन, मॉनसून बहुत जो IMD की फोरकास्ट के हिसाब से कि मॉनसून कुछ जगह पे बहुत अच्छा रहेगा और कुछ जगह पे थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि सचेत रहें और सही तकनीक से अपने कृषि और अपने फसल उत्पादन को करें। और अगर हम सचेतता के साथ और सही ज्ञान के साथ अपना फसल उत्पादन करेंगे तो मुझे लगता है कि हम किसी भी तरीके से अपने एक तो फसल उत्पादन को खोएंगे नहीं और खेती से होने वाली आपकी आय किसी भी तरीके से कम नहीं होगी।
1: बिल्कुल मनोज जी, आपने सही कहा कि सही तकनीक और सही समय पर जानकारी के द्वारा आप अपनी खेती को बचाएंगे, खेती में काम करेंगे तो जरूर आप खेती के साथ साथ आप अपने उत्पादन को भी बरकरार बनाए रखेंगे। मनोज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रियंका बहन, अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे ये जानकारी का विषय था खेत बचाओ अभियान में इफ्को MC की भूमिका, और जानकारी दे रहे थे मनोज वार्ष्णेय और जो कि प्रबंध निदेशक है इफ्को MC, और इनसे बातचीत कर रहे थे PS भाटी।
3: बिल्कुल, और देखिए लगातार हम भी अपने कार्यक्रम के जरिए बताते रहते हैं कि अधिक से अधिक जैविक खेती की ओर हमारे किसान भाइयों को अग्रसर होना चाहिए ताकि रसायनों का कम प्रयोग हो और हमारे जो खेत की मिट्टी है वो भी अच्छी बनी रहे। और हमारे टॉकर ने भी बात की कि जैविक उत्पादों का इस्तेमाल करें जिससे कि हमारे रासायनिक जो वो उन पे हमारी जो निर्भरता है वो कम हो और जैविक खेती की ओर हम लगातार अग्रसर हों। और हम बात कर रहे थे अपने शारीरिक स्वास्थ्य की भी, तो मोटे अनाज खाने के साथ साथ उगाने के भी बड़े फ़ायदे हैं क्योंकि ये कम उपजाऊ भूमि पर भी हो जाते हैं और बाज़ार में लगातार इनकी डिमांड बढ़ रही है और इनसे बने हुए प्रोडक्ट की भी बहुत ही अधिक डिमांड है। तो हमारे जो अगले कलाकार हैं वो भी हमें मोटे अन्न के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मोटा अन्न उगाएं और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। और सुनते हैं ब्रजपाल चरोरा की आवाज़ में ये रागनी।

0: बहन अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे, ये रागिनी कलाकार थे ब्रजपाल सिंह चरौरा।
1: और देखिए, हम सरकारी अगर योजनाओं की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख और परिवर्तनकारी पहल है, जिसे कि 16 जनवरी 2016 को देश में नवाचार, उद्यमिता और मजबूत इकोसिस्टम के निर्माण को देखते हुए शुरू किया गया था। और इसमें जो भी युवा हैं उन्हें नौकरी मांगने वाले की बजाय नौकरी देने वाला बनाया जाए, ऐसा इसमें विचार किया गया था।
0: बिल्कुल प्रियंका बहन, इसके साथ साथ स्टार्टअप इंडिया के तहत नए उद्यमों को पंजीकरण कराने की सरल प्रक्रिया, कर में छूट, वित्तीय सहायता, बौद्धिक संपदा अधिकार, सम्मति सहायता तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ साथ इसमें युवाओं को अपने नए विचारों को व्यवसाय के रूप में देने का अवसर भी मिलता है। हम अब बात कर रहे हैं, इसमें यह योजना तकनीकी, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ई कॉमर्स और अन्य क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करती है और इसके परिणाम स्वरूप देश में हजारों नए स्टार्टअप स्थापित हुए हैं। प्रियंका बहन, जैसे कि जिन्होंने रोजगार में अनेक अवसर पैदा किए हैं, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की है।
1: बिल्कुल, और कोई भी व्यवसाय शुरू करना होता है तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है धन की समस्या। तो
0: हाँ
1: इस बात को ध्यान में रखते हुए लोन की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें कि आपका जो भी स्टार्टअप है उसके साइज़ और आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से आपको 20 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन आसानी से मिल सकता है। तो स्टार्टअप इंडिया के इस जो कार्यक्रम है इसमें युवाओं का अधिक से अधिक भागीदार होना चाहिए, ताकि इस योजना को
0: भरपूर लाभ उठा सके, जिससे उनके वो अपने उद्यमी बन सकें।
1: बिल्कुल। और अब सुनवाते हैं जयप्रकाश शर्मा की आवाज़ में ये उपलब्ध।

0: रिंगा बहन, अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे ये उपदेश। कलाकार थे जयप्रकाश शर्मा।
1: देखिए लोकेंद्र भाई, किसानों के लिए मौसम की सटीक जानकारी हो जाए अगर प्राप्त, तो फसलों को भारी नुकसान से बचाया जा सकता है। किसान अपने मोबाइल पर मेघदूत ऐप के जरिए अपने ब्लॉक स्तर पर मौसम का पूर्वानुमान और कृषि सलाह प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा IMD और मौसम ऐप का उपयोग करके भी हर रोज़ मौसम की ताज़ा अपडेट और बारिश का अलर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सटीक जानकारी दी जाती है मौसम विभाग द्वारा। इस ऐप में तापमान, बारिश और आंधी की सटीक जानकारी किसान भाइयों को मिलती है, और अगर समय रहते सटीक जानकारी मिल जाए तो उसका लाभ किसान भाइयों को होता ही है।
0: हाँ।
1: और देखिए, अगर हम बात करें अपने कार्यक्रम की, तो कल है शनिवार, और शनिवार को हमारे श्रोताओं का पसंदीदार कार्यक्रम फ़ोन इन कार्यक्रम, जो कि लोकगीतों पर आधारित होता है, जिसमें हमारे श्रोता फ़ोन के ज़रिए हमें अपनी पसंद से अवगत कराते हैं और हम उनके पसंद के कलाकारों को और उनके पसंद के गीतों को कार्यक्रम में शामिल करते हैं।
0: हाँ।
1: तो कल 6:30 पर हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर कार्यक्रम का हिस्सा आप भी बनना चाहते हैं, तो कार्यक्रम के दौरान आपको फ़ोन नंबर और रिकॉर्डिंग का समय, हर एक जानकारी विस्तृत रूप से दी जाएगी। तो 6:30 पर हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

कृषि जगत या आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और आइए अब सुनते हैं गजल और कव्वाली के कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ खूबसूरत सी कव्वालियां।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे गजल और कव्वाली के कार्यक्रम का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से बस कुछ ही पलों में सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भारत मजबूत वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। तुगलकाबाद में रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग में 3 लोगों की मौत। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और दिल्ली सरकार ने ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर अश्विनी चोपड़ा चौक किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में आज मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में कहा कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के तौर पर पहचाना जा रहा है।
5: प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियों, दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप बीते 12 वर्षों में भारत ने खेत खलिहान से लेकर चंद्रयान तक और गांव की चौपाल से लेकर वैश्विक मंचों तक अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 वर्षों में भारत ने जो यात्रा तय की है वो असाधारण है। आज का भारत वैश्विक एजेंडा को प्रभावित करने वाला है, दुनिया को दिशा देने की क्षमता रखता है और ये सब कुछ संभव यदि हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन के कारण, उनके नेतृत्व के कारण।
4: मुख्यमंत्री ने बताया कि अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन गया है।
5: प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6 करोड़ से अधिक लोगों को डिजिटल एम्पावरमेंट मिला और भारत नेट प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया। मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में नई पहचान दी गई। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन लगभग 6 गुना ज्यादा बढ़ा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन गया है।
4: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 4.5 लाख किलोमीटर की ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनी हैं और आज एक भी गांव नहीं है जो हाईवे से न जुड़ा हो।
6: 12 वर्षों को देखें तो भारत की जनता और सरकार के बीच बने उस मजबूत विकास की कहानी कहते हैं जिसने भारत को दिशा दी और दशा को बदला है। 2014 से पहले 18,000 गांव में लाइट नहीं थी, उन्होंने संकल्प लिया और 4 साल में ये संकल्प पूरा किया और उसके अगले 4 साल में हर घर में बल्ब जला। आज 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है। आज चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया है।
4: दिल्ली नगर निगम ने आज से अपने सभी 12 जोन में विशेष स्वच्छता और साफ सफाई अभियान का शुभारंभ किया। अभियान 20 जून तक जारी रहेगा। ये अभियान मोदी सरकार के 12 वर्ष के राष्ट्रव्यापी उत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से स्वच्छ भारत मिशन जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना और स्वच्छता, कचरा प्रबंधन तथा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के प्रयासों को और सुदृढ़ करना है। इस अवसर पर उप महापौर डॉ मोनिका पंत ने शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के कड़कड़डूमा गांव में आयोजित विशेष स्वच्छता अभियान में भाग लिया। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज जल बोर्ड मुख्यालय में पानी के टैंकर का कमांड

0: और कंट्रोल सेंटर और SCADA प्रणाली का निरीक्षण किया। उन्होंने राजधानी में टैंकर ऑपरेशंस की निगरानी प्रणाली का जायजा भी लिया। श्री सिंह ने 1916 हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों पर कार्रवाई की प्रणाली की भी समीक्षा की। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अधिकारियों को शिकायतों पर कार्रवाई के समय में और सुधार करने तथा समस्याओं का समाधान और भी तेजी से करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि समय पर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना और नागरिकों की समस्याओं का तेजी से समाधान करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन सराय काले खां की ओर स्थित दूसरे प्रवेश द्वार के पुनर्विकास का कार्य शुरू हो गया है। नमो भारत फुटओवर ब्रिज को रेलवे फुटओवर ब्रिज के साथ जोड़ने और एक अस्थायी बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है, जिसे मई 2026 में यात्रियों के लिए खोल दिया गया। श्री उपाध्याय ने बताया कि यात्री सुरक्षा के हित में और कार्य के सुचारू निष्पादन के लिए सराय काले खां की ओर स्थित रेलवे स्टेशन का मौजूदा प्रवेश और निकास द्वार दोबारा बंद कर दिया गया है। राजधानी के तुगलकाबाद क्षेत्र में आज सुबह एक रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार आग इमारत के भूतल स्थित पार्किंग क्षेत्र में लगी, जहां खड़ी कुछ मोटरसाइकिलें और स्कूटर इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद आग पूरी इमारत में फैल गई।
1: दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार सुबह 2:25 पर घटना की सूचना मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 8 दमकल गाड़ियां भेजी गई। राहत और बचाव अभियान के दौरान 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर कहा कि तुगलकाबाद में आग लगने की घटना और इससे हुई जान माल की हानि बेहद दुखद है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने बताया कि घायलों को हर संभव बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और सभी संबंधित विभाग समय पर मदद और सहायता पहुंचाने के लिए आपसी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर और सैदुलजाब में आग की घटनाओं में लोगों की जान बचाने वाले बहादुर नागरिकों और बचाव कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन बहादुर नागरिकों ने संकट के समय कई लोगों की जान बचाने में असाधारण साहस, सूझबूझ और संवेदना का परिचय दिया। उन्होंने इन दुर्घटनाओं में मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। दिल्ली परिवहन निगम DTC ने राजधानी में सार्वजनिक यातायात की पहुंच को और ज्यादा बेहतर बनाने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में DTC ने एक नया रूट 806A का शुभारंभ किया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के द्वारका मोड़ और पापरवत गांव के बीच पायलट आधार पर शुरू किया गया नया रूट 800A सेवा पापरवत गांव, नांगली, सकरावती, काकरोला और आसपास के इलाकों के नागरिकों को सीधा बस कनेक्टिविटी देगी। यह मार्ग दक्षिण पश्चिम दिल्ली के ग्रामीण और शहरी सीमावर्ती इलाकों में बेहतर सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की लंबे समय से चल रही मांग को पूरा करता है। फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए DTC ने देवी रोड D6606 को शुरू किया है, जो उत्तम नगर टर्मिनल को DDA फ्लैट बकरवाला से जोड़ता है। दिल्ली के यातायात कनेक्टिविटी को और मजबूत करते हुए DTC ने रूट नंबर RL79 को द्वारका सेक्टर 23 पोचनपुर से आगे बढ़ाकर द्वारका सेक्टर 23B महादेव अपार्टमेंट्स तक कर दिया है। इस अवसर पर दिल्ली परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नए विकसित हो रहे रिहायशी इलाकों और बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवागमन की जरूरतों और बेहतर सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन मार्गों को जोड़ने और विस्तार करने की योजना बनाई गई है। परिवहन मंत्री ने कहा कि यह पहल सार्वजनिक परिवहन को अधिक समावेशी, किफायती और सुविधाजनक बनाने के साथ साथ पूरी दिल्ली में सतत और ग्रीन मोबिलिटी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की सरकार की लगातार कोशिश को दर्शाता है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने राजधानी में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए डेवलप रिस्पॉन्सिबल आउटलुक फॉर प्लास्टिक परियोजना

0: DROP का शुभारंभ किया। ये पहल प्लास्टिक अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन को सुदृढ़ करने, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज डॉ बीआर अंबेडकर वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री सिंह ने अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्थाओं और आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की। इसके अलावा समाज कल्याण मंत्री ने सिविल लाइन्स स्थित अपने आवास पर प्रगति पथ यात्रा के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी, जनोन्मुखी तथा व्यापक बनाने के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। दिल्ली के ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर अब अश्विनी चोपड़ा चौक कर दिया गया है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस नाम पट्टिका का अनावरण किया। दिवंगत अश्विनी चोपड़ा वरिष्ठ पत्रकार, समाजसेवी और करनाल से पूर्व सांसद थे। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस चौक का नाम बदलना बहुत ही सुखद पल है।
1: आज एक खुशी का मौका है कि इस चौक को दिल्ली सरकार ने मिन्ना चौक के नाम से निमंत्रण किया है और इस चौक को हम सबका फर्ज है, सरकार का भी है, लेकिन आप सबका है कि ये दिल्ली का सबसे साफ सुथरा और अच्छा चौक कहलाया जाए।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवंगत अश्विनी चोपड़ा का जीवन जनसेवा, संवेदनशीलता और सामाजिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहा।
2: समाज के उन प्रबुद्ध नागरिकों को जिनका समाज के लिए योगदान रहा है, ऐसे वरिष्ठ जनों को सम्मानित करने के लिए किसी चौक चौराहे का नाम रखते रहे हैं। आज ये चौक जो पूर्व में ब्रिटानिया चौक कहलाता था, पुण्यतिथि जो अश्विनी चोपड़ा जी की है, हमने ये तय किया कि इस चौक का नाम अश्विनी चोपड़ा मिन्ना रखा जाए, ताकि एक ऐसे निर्भीक पत्रकार जिन्होंने हमेशा समाज और देश की आवाज बन करके काम किया, उनको सरकार की ओर से सम्मानित किया जाए।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्री अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों को सुरक्षित और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में ये बात कही। गृहमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। श्री सोमनाथन ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन पुनर्परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज नई दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय निशानेबाजी को नई पहचान दिलाने और अनेक खिलाड़ियों का मार्गदर्शन देने में जसपाल राणा का योगदान सदैव याद किया जाएगा। राजधानी में आज दिन भर उमस भरी गर्मी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने तथा दोपहर के बाद हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भारत मजबूत वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। तुगलकाबाद में रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग में 3 लोगों की मौत। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन और दिल्ली सरकार ने ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर अश्विनी चोपड़ा चौक किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनिए आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में नाटक रेडियो के रंगमंच।
1: आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष विशेष रेडियो नाटक रेडियो का रंगमंच के संपादित अंश। लेखिका सुनीता अग्रवाल, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
2: नमस्कार। आकाशवाणी के प्रसारण भवन में भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित श्रोता और उपस्थित सभी कला प्रेमियों का अभिनंदन इस विशेष कार्यक्रम में। आज का ये अवसर अत्यंत विशेष और ऐतिहासिक है। हम सब यहाँ एक ऐसे संस्थान की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसने 9 दशकों से देश की आवाज बनकर करोड़ों लोगों के जीवन को गहरे से छुआ है। आकाशवाणी, आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल समय की यात्रा नहीं बल्कि संस्कृति, साहित्य, संगीत, समाचार और जन जागरण की एक समृद्ध परंपरा के 90 स्वर्णिम अध्याय हैं। रेडियो ने केवल सूचनाएं ही नहीं पहुंचाई हैं बल्कि कल्पनाओं को पंख दिए हैं, संवेदनाओं को स्वर दिया है और कहानियों को जीवन दिया है। विशेष रूप से रेडियो नाटक की अगर बात की जाए तो रेडियो नाटक ने श्रोताओं के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ी है, इस बात से आप सभी सहमत होंगे। बिना दृश्य के केवल ध्वनि, संवाद और संगीत के माध्यम से संपूर्ण संसार रच देना अपने आप में बेहद रहस्यपूर्ण है, लेकिन रेडियो ने यह सब साकार किया है। यही रेडियो रंगमंच की अद्भुत शक्ति रही है। इसी विरासत को नमन करते हुए आज आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है विशेष नाटक रेडियो का रंगमंच। ये नाटक न केवल रेडियो नाटकों की समृद्ध परंपरा की एक अटूट कड़ी है बल्कि उन कलाकारों, लेखकों, निर्देशकों और तकनीशियनों को भी श्रद्धांजलि अर्पित हम कर रहे हैं इसके माध्यम से, जिन्होंने ध्वनियों के माध्यम से अनगिनत संसार रचे हैं। तो आइए हम सब अपनी कल्पना के द्वार खोलें, ध्वनियों के इस जादुई संसार में प्रवेश करें और रेडियो रंगमंच की उस अनूठी यात्रा का आनंद लें जिसने पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया है। आज की प्रस्तुति नाटक रेडियो का रंगमंच, सभी कलाकारों को आदर भाव से मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं, कृपया मंच पर आएं और करतल ध्वनि से हम स्वागत कर रहे हैं सभी कलाकारों का।
3: हेलो हेलो हेलो हेलो।

0: कहाँ रहते हैं अकेला?
1: आजकल टेंशन में रहता हूँ।
2: चुप चुप चुप चुप चुप, बिल्कुल टेंशन में नहीं, अटेंशन में आ जाइए।
1: ठीक,
2: सब तैयार हैं?
0: जी जी,
2: आप भी सब तैयार हैं?
3: जी।
2: तो लीजिए पोजीशन माइक पे, मैं पैनल पर जा रही हूँ। अच्छा, एक रिहर्सल हो जाए या सीधे ही रिकॉर्डिंग?
1: क्या मैडम, अब आप हमसे रिहर्सल करवाएंगी? आपको तो पता है, आप जो भी रोल देती हैं एक्टिंग एक जैसी करता हूँ।
0: मैं तो देखिए बिना रिहर्सल के माइक पर हाथ नहीं रखता हूँ।
1: रखना भी मत, बहुत खतरनाक करंट लगता है। जोर का झटका धीरे से लगता है।
4: शुरू करें फिर मैम?
3: क्या?
2: ओहो गीता जी, स्टूडियो में रहिए, शॉपिंग करने बाद में जाइएगा।
3: अच्छा, रिकॉर्डिंग से पहले या बाद में जाना है?
2: मैंने कहा ना, रिकॉर्डिंग से पहले नहीं, रिकॉर्डिंग के बाद जाइए शॉपिंग पर।
3: आप भी वैसे बहुत मजाकिया है डायरेक्टर साहब।
2: सचिन
4: जी मैम,
2: आप शुरू हो जाएं।
4: अच्छा, ये क्या मैम, मुझे गाना गाना है क्या?
2: हाँ गाना है, आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी क्या? अरे आप इस नाटक में उभरते हुए सिंगर हैं, और आपकी माता जी का ये सपना है कि वो आपको एक महान सिंगर बनाएं।
4: और मैंने तो सोचा था कि आप बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, मतलब पीछे से कुछ लगाएंगे गाना। मतलब
1: भाई
4: गायक तो हूं ना।
1: फिर नर्वसा क्यों रहे हो भाई, काहे मुश्किलिटी है? क्यों क्यों सुरेंद्र?
0: बिल्कुल हम आपके साथ हैं।
2: हाँ, लेकिन कीमती जी

0: आपको सचिन के गाने को रोकना होगा, क्योंकि ये बहुत बेसुरा गाएगा यहाँ पर, मतलब नाटक में। वैसे मुझे समझ नहीं आता, आप लोगों ने लगता है स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी अब तक और मुझे ही सब कुछ बताना पड़ रहा है, भाई ये क्या बात हुई?
1: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मैम, हमने स्क्रिप्ट पढ़ ली है। अरे एक रिहर्सल भी की हमने।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अरे मालूम है कॉमेडी स्क्रिप्ट है ना, तो सब उसी मोड में है आज।
2: और शायद आपको तंग करने के मूड में भी।
0: ऐसे नहीं, क्यों भाई, क्या पिछले नाटक की पेमेंट नहीं हुई अब तक?
2: अरे नहीं नहीं मैडम जी, वो तो आप सबसे पहले करवाते हो, यही तो तारीफ है आपकी।
1: जी।
2: ये बात और है कि कभी कभी हाथ बंधे हो तो कह नहीं सकते।
3: सही बात है, ये तो है भाई। चलो भाई सचिन, गंदे बच्चे अच्छी बात नहीं करते। अरे नहीं, मेरा बताओ, अच्छे बच्चे गंदी बात नहीं करते। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग शुरू हो जाओ। चलो
4: शुरू करो मैम।
0: अरे एक मिनट एक मिनट, भूल गए क्या, पहले आवाज का लेवल तो दे दो, चेक कर ले।
4: वो भी जरूरी है। हेलो, मैं सचिन कथुरिया। आज के नाटक में मेरा कैरेक्टर है उभरता हुआ गायक, यानी कि सिंगर।
0: परफेक्ट सचिन। गीता जी, अब आपकी बारी है।
5: हेलो हेलो, मेरा नाम गीता वर्मा है। आज के नाटक में मेरा कैरेक्टर है उभरते हुए सिंगर की माँ।
0: लेकिन गीता जी, आप शायद भूल गई हैं कि आपको माइक के थोड़ा पास आना पड़ता है और थोड़ी हाइट लेनी पड़ती है ना। तो करिए ना।
5: जी हेलो हेलो, मेरा नाम गीता वर्मा है।
0: हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कीमती जी, अब आप।
3: हेलो हेलो, मेरा नाम है कीमती आनंद, रखता हूँ सफाई, नहीं डालता गंद। नाम तो सुना होगा, नाम ही काफी। और मेरा कैरेक्टर है इस नाटक में उभरते हुए गायक के गुरुजी का।
0: परफेक्ट कीमती जी। पर वैसे गा लेंगे ना आप?
3: अरे जी जी बिल्कुल, मैं तो सिंगर ही बनना चाहता था।
0: ओ।
3: पर मोहम्मद रफी साहब ने कहा कि देख, तुझे तो एक्टिंग भी आती है और मुझे सिर्फ गाना आता है, तू क्यों मेरे पेट पे लात मार रहा है? तू एक्टिंग करके कमा खा, मुझे गाकर कमाने दे। तो कुर्बानी दे दी मैंने मैडम, वरना आज मैं बहुत बड़ा कलाकार होता। हाँ।
0: पता नहीं मोहम्मद रफी साहब का शुक्रिया हम कैसे अदा करें। शुक्रिया मोहम्मद रफी साहब आपका। वैसे जहे नसीब हमारे कीमती जी, आपकी कुर्बानी हमारे काम आ गई।
3: थैंक यू।
0: सागर जी।
1: जी जी मैम।
0: आपकी टर्न है, लेवल दे।
1: हाँ जी। हेलो हेलो हेलो हेलो, मैं सुरेंद्र सागर। आज के नाटक में मेरा कैरेक्टर है उभरते हुए सिंगर के फादर का, यानी पिता का।
0: वैसे मैं नोटिस कर रही थी कि आप लोग भी ना एक दूसरे को सही पकड़ते हैं। एक ने बोला एक बार हेलो, दूसरे ने बोला दो बार हेलो, तीसरे ने बोला वैसे बोलना तीन बार था, बोल दो बार गए हेलो, और चौथे कैरेक्टर ने चार बार बोला हेलो। भाई वाह भाई वाह, आप लोगों का तो जवाब नहीं है।
4: हेलो हेलो हेलो।
1: कीमती जी का असर आ गया जी हम सब पर।
0: वैसे सागर जी, आप जी? बहुत ऊंचा बोलते हैं, कई बार आपको बताया है, जरा हल्का सा माइक से दूर हो जाइए ना, थोड़ा सा अब बफ ना आए ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें।
1: अब आने दीजिए ना मैम, वैसे भी आजकल काम तो आ नहीं रहा है। तो
4: सच नहीं बोल रहा।
0: वैसे ठीक है, कोई पंच मार रहे हैं आप, कुछ भी कर लें, लेकिन कीमती जी नहीं बन पाएंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करें। सचिन माइक पोजिशन। ओके ग्रेट, लेट अस स्टार्ट।
6: मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। मेरठ में मेरी मौसी है और जमुना पार में नानी है।
1: अरे ये किसका बच्चा रो रहा है भाई?
2: अजी हमारा ही तो है।
1: अरे उसे चुप कराओ प्लीज, प्लीज उसे चुप कराओ, वरना मैं इसकी हस्ती दो पल में नहीं एक ही पल में मिटा दूंगा या खत्म कर दूंगा।
2: ओफो, आपको शर्म नहीं आती जी अपने बच्चे के बारे में ऐसा कहते हुए? हाय हाय, ईश्वर करे हमारे बच्चे की हस्ती बढ़े, वो नामवर गायक बने।
1: अरे क्यों बने, गायक ही क्यों बने? अरे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सरकारी नौकर बने, पर गायक ही क्यों बने?
2: क्यों ना बने, मैं कहती हूँ क्यों ना बने। हाँ जी।

0: मेरे बचपन का सपना था, मैं गायिका बनना चाहती थी, पर आपने आपने मेरे ख्वाबों को कुचल कर रख दिया।
1: मैंने तुम्हारे ख्वाबों को कुचल कर रख दिया? कब, कैसे, कहाँ?
0: 20 अप्रैल 2001 को, जब तुम मेरे घर बारात लेकर आए थे।
1: अच्छा, तो तुम उस दुर्घटना की बात कर रही हो जिसका परिणाम ये पल दो पल का सायर है।
2: परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के सुन रहा परदेसी मेरे जाना नहीं।
1: परदेसी परदेसी आना नहीं।
2: क्यों नहीं आएंगे? आएंगे वो।
1: आके तो दिखा तू, मैं इसका काम ना तमाम कर दूं तो मेरा नाम। अरे गीता छोड़, छोड़ो मुझे। अरे तुम छोड़ो मुझे।
0: अरे हमें पकड़ा ही कब है?
3: मम्मी देखो ना, पापा मेरे गाने से कितना बर्न फील करते हैं, जलते हैं।
1: बेटा मैं कितना बितना नहीं, पूरा जल चुका हूं अंदर तक। अच्छा बस एक बात बताओ भाई, तुम तो डांसर बनना चाहते थे ना?
3: हाँ।
1: और तुम तो वो मुंबई गए थे, वो कौन सा कंपटीशन होता है, वहां गए थे ना?
4: अरे सागर भाई, मैं भी मुंबई गया था।
1: अच्छा,
4: गाने के कंपटीशन में हिस्सा लेने। मैंने 2 ट्रॉफी जीती थी।
1: दो?
4: हाँ।
1: दो क्यों?
4: पहले इसलिए कि मैंने गाना गाया, दूसरी इसलिए कि आगे से ना गाऊं।
5: कीमती जी, क्या करते हैं आप, फिर से नाटक के बीच में अपना नाटक लेकर आ जाते हैं, ऐसा मत करिए ना प्लीज।
4: चलो सॉरी के लिए,
1: मैं अपनी लाइन बोलूं,
4: सॉरी के लिए माफी चाहता
5: हूं। मैं फिर से क्यों देती हूँ। स्टार्ट
1: भाई, तुम तो कंपटीशन में गए थे ना, डांस वाले में। क्या हुआ, उन्होंने धक्के दे के वापस भेज दिया दिल्ली?
3: हाँ, तो मुझे मतलब सुरों का ज्ञान नहीं था, कॉम्पिटिशन में गया था मैं डांस के, जब सुरों का ज्ञान नहीं होगा तो पैर से डांस कैसे करूंगा मैं, कैसे स्टेप आएंगे मेरे। उन्होंने बोला कि जाओ पहले म्यूजिक को सीख के आओ, तो इसलिए मैंने गाना सीखना शुरू किया अपने डांस करने के लिए, समझे? हाँ। और मम्मी ये पापा ना मेरी बार बार बेइज्जती करते हैं, इतनी बेइज्जती मत करा करें मुझे, मेरी बेइज्जती बड़े बर्दाश्त नहीं है, मैं बता रहा हूँ मैं भी बेइज्जती कर दूंगा सबके सामने।
1: ए बेटा, ए बेटा, ए बेटा, बेटा मेरे लाल पीला मत हो मेरे लाल बेटा, बेइज्जती होता है बेइज्जती नहीं। बेइज्जती कहकर तू बेइज्जती की बेइज्जती, अरे नहीं यार क्या, बेइज्जती कहकर तू बेइज्जती की बेइज्जती कर रहा है, एक दिन देखना ये बेइज्जती तुझसे इसका बदला लेके रहेगी।
0: अजी छोड़ो ना, अपनी बेइज्जती की फिक्र करो। अंदर चलो।
1: क्या
0: आपने सुबह से दवाई नहीं ली ना?
1: नहीं, मैं
0: देती हूँ।
1: नहीं नहीं,
0: चलो अंदर।
1: नहीं नहीं,
0: चलो अंदर।
1: अरे नहीं नहीं,
0: चलो अंदर। अरे बेटा सचिन,
3: मम्मा
0: तुम इनकी चिंता छोड़ो ना, अपना रियाज शुरू करो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम।

0: हे ईश्वर, हे ईश्वर उठा ले मुझे।
1: नहीं ईश्वर, मुझे उठा ले,
0: मुझे उठा ले,
1: मुझे उठा ले,
0: मुझे उठा ले,
1: मुझे उठा ले,
0: मुझे उठा ले,
1: मुझे उठा ले।
0: ठीक है प्रभु, लेडीज फर्स्ट, उठा ले।
2: क्या बात कर रहे हो यार? माँ वैसे एक बात बोलूं?
1: हाँ।
2: आप कितना अच्छा गाती हैं, बस थोड़ा बहुत राग ऊपर नीचे हो जाता है, एक दो घंटे मेरे साथ
3: बैठना। एक मिनट कट कट बोलने दो ना इनको अपना डायलॉग। आपके साथ तो वैसे चैना नहीं बेचैना ही हो सकता है।
1: नहीं, पहले आपने कहना
0: है ना। भगवान इसको उठा ले, उसके
1: बाद आपने कहना है।
3: शांति शांति शांति शांति शांति स्टार्ट।
0: हे ईश्वर उठा ले मुझे, उठा ले मुझे,
1: मुझे उठा ले,
0: मुझे उठा ले,
1: मुझे उठा ले,
0: मुझे उठा ले,
1: मुझे उठा ले,
0: मुझे उठा ले,
1: मुझे उठा ले।
0: ठीक है प्रभु, लेडीज फर्स्ट, पहले इसको उठा ले। अरे भाई, चैना नहीं रहना होता है, रहना रहना रहना।
1: अरे आपके साथ रहकर किसे चैन मिल सकता है? इंसान तो बेचैन ही रहेगा, रहना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
3: यस।
2: और मम्मा आप कितना अच्छा गाती हो, आपको पता है?

0: बस थोड़ा बहुत राग ऊपर नीचे, एक दो घंटे मेरे पास बैठिएगा, रियाज करवाऊंगा और सब साफ एकदम से, गला साफ मतलब आवाज साफ, बहुत बढ़िया। अच्छा मम्मी, वो मेरे गुरुजी आने वाले हैं, हाँ। तो कुछ बढ़िया सा खाने को मंगवा लीजिए।
1: जैसे क्या?
2: जहर
1: अभी नहीं।
0: मम्मी जहर, जहर जहर पिज्जा का नाम नहीं होता है। अरे मैं बोल रहा हूँ दो चार पिज्जा, दो चार सैंडविचेस एंड बर्गर्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड थोड़ी बहुत आइसक्रीम मंगा लेना, है ना। एक्चुअली क्या है, उससे ना मेरा गला एकदम से ठीक हो जाता है रियाज, जब मैं करता हूँ ना गला बैठता है, आइसक्रीम खाता हूँ गला खड़ा हो जाता, तो एकदम से ठोस आवाज हो जाती है।
2: ये मेरी औलाद है क्या?
0: हाँ,
2: ये ऐसी क्यों है भगवान, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है।
1: अजी कैसी बातें कर रहे हैं आप, अपने बच्चे के बारे में कोई ऐसे अनाप शनाप बोलता है क्या? हा? आपको नहीं पता जी, जिस गुरुजी ने मुझे सिखाया था ना वही अपने सचिन को सिखा रहे हैं गाना
0: जी।
1: मुझे पक्का विश्वास है वो एक ना एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेगा
2: जैसे तुमने किया है।
1: मैं तो कर ही देती पर वो 20 अप्रैल 2020 रिपीट।
3: क्या करती हैं आप गीता जी, अपनी अटेंशन में रहिए ना। देखिए रिपीट नहीं होता है, रीटेक हो जाता है। हाँ प्लीज प्लीज,
1: स्टार्ट करूं?
3: हाँ करिए स्टार्ट।
1: मैं तो कर ही देती पर 20 अप्रैल 2001 ने मेरी जिंदगी खराब कर दी।
4: बांसुरी बजाई, बांसुरी बजाई क्या तेरे मन भाई, राधे तूने बांसुरी बजाई।
2: अरे सर सर सर सर सर सर, राधिके तूने बंसुरी चुराई है, बजाई नहीं है।
3: ओफो, मैं बीच में कहां से आ गई नाटक में, आप नाटक करिए ना। देखिए प्लीज प्लीज, यही है कि आपने इन्हें करेक्ट करना था, टोकना नहीं था, लेकिन मुझे रेफर नहीं करना था स्क्रिप्ट पर, जरा फोकस करिए ना सुरेंद्र जी।
2: सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी सर, एक बार और लेते हैं सर,
3: एक मिनट एक मिनट
2: सर, एक बार
3: स्टार्ट।
4: राधे तूने बांसुरी बजाई, बजाई
2: सर,
4: ठीक है।
2: राधिके तूने बांसुरी चुराई है, बजाई नहीं।
4: जब तक मेरी फीस नहीं मिलती ना, बांसुरी राधे ही बजाएगी। वैसे हु आर यू, आप कौन महाशय हैं?
1: चरण वंदना गुरुजी, चरण वंदना। ये मेरे पति देव है गुरुजी।
4: पति देव नहीं, ये देव नहीं है, ये प्रतिभा के रास्ते में आए हुए अदेव हैं, असुर हैं। और असुर वो नहीं होते जिन्हें हम राक्षस समझते हैं, असुर वो होते हैं जिनके पास ना सुर का ज्ञान होता है ना सुर की समझ, और वो अपनी असुरी आवाज से दुनिया का सत्यानाश करते फिरते हैं, जैसे तुम्हारे ये पति देव। इन्हें जितनी जल्दी से हो यहां से हटा दो, वरना जैसे तुम कुछ नहीं बन पाई वैसे तुम्हारा बेटा भी कुछ नहीं बन पाएगा।
2: क्या ऐसा हो जाए?
1: नहीं नहीं,
3: ओफो कट कट। गीता जी पता नहीं आप कहाँ गुम हो जाती हैं। नहीं नहीं नहीं करके थोड़ी बोलना है, नहीं कीजिए प्लीज, जोर से कहिए।
1: ओके ओके, नहीं मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी।
0: सही पकड़े हैं गुरुजी, आप कहें तो सुपारी दे दूं क्या इनकी?
4: पहले मेरी फीस तो दे दे। दो दिन हो गए मेरी फीस नहीं आई अभी तक।
2: मतलब ये रोज के पैसे लेते हैं क्या?
1: जी मेरे गुरुजी ऐसे ही हैं, ये रोज के ही पैसे लेते हैं।
4: करेक्ट।
2: कितने कितने पैसे लेते हैं?
1: अरे ज्यादा थोड़ी लेते हैं, बस एक घंटे के 5,000।
2: क्या? एक घंटे के 5,000?
1: अरे चिंता क्यों कर रहे हो, डिस्काउंट देते हैं अच्छा खासा। वो भी इसलिए क्योंकि मैंने इनसे गाना सीखा है, नहीं तो ये किसी को डिस्काउंट ना दे, एक पैसा भी कम नहीं करते। हाँ।
2: अच्छा कितना डिस्काउंट देते हैं तुम्हारे गुरुजी?
4: 4,999 रुपए लेता हूँ। हाँ। डिस्काउंट के साथ। इससे ज्यादा क्या कम करूं बताओ, इससे ज्यादा क्या कम करूं, बता बता बताओ, इससे ज्यादा क्या कम करूं बताओ। अरे वाह।

0: मैं तो खड़े खड़े गाना भी बना लिया मैंने तो। हूं ना मैं जीनियस, पता नहीं मेरी कला को कब पहचानेंगे।
1: आप तो पूरे 5,000 के लायक हैं, आप डिस्काउंट मत दीजिए कि ये।
2: जिस दिन आप लोगों के हाथ आ गए ना गुरुजी, उस दिन आप कई दिनों तक अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे।
0: क्या क्या क्या कहा तुमने?
3: अरे गुरुजी कुछ नहीं कुछ नहीं, इनका मतलब है कि आपने इतना ज्यादा डिस्काउंट क्यों कर दिया पूरे 1 रुपए का?
0: क्योंकि मैं गरीबों पर दया कर देता हूँ।
4: वैसे तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा गाता है, ये बहुत आगे जाएगा,
0: मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा नाम करेगा रोशन, ये तुम्हारा राज दुलारा।
1: बड़ा बोल नहीं बोलता मैं भाई, बहुत ऊपर वाले को बहुत कर रहे हैं, थैंक यू। अच्छा मैंने ना एक ना गाना बनाया है, लिखा भी है, कंपोज भी किया है। अच्छा? सुनाऊं?
0: सुना,
1: सुनाई देता हूं, चलो।
0: स्टार्ट।
1: शायद मेरी शादी का ख्याल।
5: स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या कर रहे हो सचिन? कैरेक्टर से बाहर निकल आए।
1: क्यों?
5: शायद नहीं कहना आपने, शायद कहना है।
0: हाँ।
5: और ख्याल नहीं ख्याल कहना है, तलफ्फुज भी गलत होना चाहिए और सुर भी गलत होना चाहिए। प्लीज प्लीज,
1: अंदर का सिंगर जाग गया था मेरा।
5: हाँ नहीं वो मत जगाओ, एक मिनट
1: सो जा बेटा।
5: स्टार्ट।
1: शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है, तुम्हें चाय पे बुलाया है।
0: कट कट, नहीं बेटा नहीं, इसे ऐसे गाना है। इसका राग समझो, सुर समझो, फिर गाओ, सुरीले बनो, बेसुरे नहीं, मूड समझो, अब गाओ। जसो मैं गाता हूँ।

0: बस बस बस बस भाई
1: थैंक यू।
0: ये गाना सावन कुमार जी ने 1983 में लिख दिया था।
2: ओ माय गॉड रियली। देखा गुरु जी मैं कितना टैलेंटेड हूँ कि मेरा पैदा होने से पहले ही मेरे गीत चोरी होने शुरू हो गए थे। नहीं बताओ ना मैं इतना टैलेंटेड।
3: अरे मुझ पर गया है ना इसलिए।
0: बेटा मेरे बेटा तू टैलेंटेड नहीं है, तू मानसिक रूप से बीमार है।
2: क्या बात कर रहे हो।
0: अरे तू सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है, तेरा इलाज होना बहुत जरूरी है। मैं आज ही किसी साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ।
1: अरे ना ना ना, आप अपने लिए अपॉइंटमेंट ले लो अंकल।
0: अंकल
1: आप अपने बेटे से जेलस हो। जेलस
0: सुन रही हो, ये मुझे अंकल कह रहे हैं।
1: तो क्या कहूँ, क्या कहूँ भाई साहब, सचिन से ज्यादा मैं बड़ा थोड़ी हूँ।
2: हाँ।
1: हिसाब करोगे तो हो सकता है कि मैं सचिन से छोटा ही निकलूं।
3: हाँ। हाँ। सागर मुझे तो हंसी सुनाई नहीं दी तुम्हारी, जोर से हंसो ना प्लीज।
0: अच्छा अच्छा हाँ।
3: एक मिनट फिर से स्टार्ट।
1: हिसाब करोगे तो मैं हो सकता है कि छोटा ही निकलूं सचिन से।
0: वाह जी वाह गुरु जी वाह। अच्छा हैं तो आप सचिन से भी छोटे, पर सचिन की माँ गीता को भी आप ही ने संगीत सिखाया है। वाह गुरु जी वाह।
1: इसमें हैरानी की क्या बात है अंकल, मैंने तो सिखाया है इसे भी और कईयों को सिखाया है कि क्या क्या नाम लूं मैं तुम्हारे सामने। अरे ऐसे ऐसे नाम लूंगा कि तुम्हारी छिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी।
0: यमराज को भी आप ही ने सिखाया है।
1: सचिन देखो तुम घबराना नहीं, जो लोग प्रतिभाशाली होते हैं उनके उनको रोकने के लिए ऐसे अंकल पैदा होते हैं। बेटा तुम्हें रोका जाएगा, तुम्हारे हौसलों को तोड़ा जाएगा।
2: यस।
1: पर तुम रुकना नहीं।
2: नो।
1: गाते रहना
2: जी।
1: गाते रहने
2: जी।
1: गाते रहे मेरा दिल
2: गा, मेरे मन गा, मेरे मन गा, मेरे मन गा।
1: ला मेरी फीस ला। दूसरा घंटा चालू हो गया, 4999 ट्रांसफर करा।
3: गुरुजी बस अभी करवाती हूँ। अजी सुनते हो, ट्रांसफर करो ना जल्दी से फोन पे।
0: अरे वो
3: जल्दी करो।
0: अच्छा हो गए
3: सर, हो गए हो गए।
1: ठीक है हाँ आ गए आ गए। अच्छा तो चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना।
2: आए, आए, आए, आए, आए, मार डाला।
1: दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम याद रखना।
2: बस, बस।
1: चिट्ठी तारों में मेरा तुम सलाम रखना।
2: क्या
1: मेरा तुम सलाम रखना, मेरा तुम सलाम रखना।
0: अरे मेरे 5000 का खया।

0: तबाह करने वाला जहरीला फनकार बना रहा है ये आदमी, और तुम लोग बनने दे रहे हो। अरे रोको इसे, डॉक्टर को दिखाओ।
1: सचिन अपने पापा को डॉक्टर को दिखाओ, वरना ये उभरते हुए टेरेंस को आगे नहीं आने देंगे।
2: सर मैं सोच रहा हूँ गुरुजी कि इनको अपना गाना सुना दूं, है ना, हो सकता है ये ठीक हो जाए। सोचता हूँ, सुना ही देता हूँ। सोचता हूँ कि वो इतने मासूम थे, सोचता हूँ वो कि इतने मासूम थे, लापता हो गए देखते देखते, लापता हो गए।
0: अरे बेटा, ओ बेटा बेटा बेटा बेटा बेटा मेरे, लापता नहीं है ये, क्या से क्या हो गए देखते देखते।
1: आपको लापता करना है अंकिल, इसीलिए जा रहा है ये गाना। शायद आपको पता नहीं है संगीत में कितनी पावर है, शक्ति है। दीप जल जाते हैं, बारिश आ जाती है, तूफान आ जाते हैं, आप भी लापता हो सकते हैं। चलो सचिन, गुरु हो जाओ शुरू, एक साथ गाते हैं, ठीक है?
2: अरे गुरु जी चरण स्पर्श, आज हाँ। पहली बार आपके साथ गाने का मौका मिल रहा है।
1: ठीक है, स्टार्ट, ओके, ऑल द बेस्ट। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, लापता हो गए देखते देखते।
2: सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, लापता हो गए देखते देखते। क्या बात है गुरुजी,
1: वाह, थैंक यू। मैंने पत्थर से जिनको बनाया था सनम, वो फना हो गए देखते देखते।
2: वाह गुरुजी, पत्थर क्या क्या मतलब आपने चुना है?
1: मैं बताता हूँ बेटा, तीसरा घंटा।
2: पत्थर से जिनको बनाया सनम, कहता है वो फना हो गए देखते देखते, बोलो देखते देखते फना।
1: बेटा मेरी एक सुन ले, तीसरा घंटा होने वाला है, है 4999 ट्रांसफर करा जल्दी से, अपने पापा से बोल इस बारे।
0: मैं लापता हो गया देखते देखते।
3: अजय सुनो, पैसे तो ट्रांसफर कर दो, फिर लापता हो जाना। हाँ ट्रांसफर कर दो जी। अरे सुन रहे हो अजय, सुनते हो?
0: हेलो, हो गए
3: हो गए हो गए गुरुजी, हो गए हो गए।
4: वाह भाई वाह, मजा आ गया। वैसे बहुत अच्छी रिहर्सल थी, अब फाइनल टेक लेते हैं। सोचते

0: आज के नाटक का शीर्षक था रेडियो का रंगमंच। यहां गुरुजी की भूमिका में थे
1: कीमती आनंद, रखता है सफाई, नहीं डालता गंद।
0: उभरते हुए कलाकार की भूमिका में थे
2: सच इन झूठ आउट, मतलब सचिन कथुरिया।
0: सचिन की माँ की भूमिका निभा रही थी
3: गीता वर्मा,
0: जो यहाँ से सीधे शॉपिंग के लिए जाएंगी।
3: सेल खत्म न हो जाए देखते।
0: सचिन के पिता की भूमिका निभाई
4: सुरेंद्र सागर, 5,000 खो गए देखते।
0: और मैंने भूमिका निभाई नाटक की डायरेक्टर की, मैं हूँ निरुपमा वर्मा। झेलती रह गई देखते देखते, क्या से क्या हो गया देखते देखते, क्या से क्या हो गया।
1: और अब आप भी घर जाइए देखते देखते देखते देखते।
5: धन्यवाद।
6: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत नाटक रेडियो का रंगमंच के संपादित अंश। लेखिका थी सुनीता अग्रवाल, निर्देशन काजल सूरी, भाग लेने वाले कलाकार थे कीमती आनंद, सुरेंद्र सागर, निरुपमा वर्मा, सचिन कथुरिया और गीता वर्मा।
7: श्रोताओं, अभी आपने सुना रेडियो नाटक रेडियो का रंगमंच। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतमालिका। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में सुने समाचार, पहले हिंदी, फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयास

0: स्थानों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम

0: से, हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।

0: आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across

0: दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम बीएसएफ चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: मरकजी काबीना के सेक्रेटरी डॉक्टर टी वी सोमनाथन ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह के साथ एक मीटिंग में नीट के दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायज़ा लिया। जायजे के दौरान जनाब सोमनाथन ने तमाम मुतालिका तरफेन के दरमियान गहरे तालमेल के साथ बिला रुकावट, शफाफ और महफूज दोबारा इम्तिहान मुनक़द किए जाने को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत, रियासती सरकारें और ज़िला इंतज़ामिया नीट के दोबारा इम्तिहान को बिला रुकावट मुनक़द किए जाने को यकीनी बनाने की गरज से गहरे तालमेल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे कबल इस माह के आगाज़ में जनाब सोमनाथन मरकजी हुकूमत और मुतालिका एजेंसियों के सेक्रेटरियों के साथ इंतजाम का जायज़ा ले चुके हैं। इधर NTA ने इस माह की 21 तारीख को होने वाले नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान की विंडो में 15 मिनट का इजाफा किया है और इसे 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये आकाशवाणी है। वजारत खारजा ने आज अमेरिका के शाज डिफियर जैसन मीक्स को तलब किया और खलीज उमान में भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाज़ों पर अमरीकी बहरी फोर्सेस के जारी हमलों के मुतालिक सख्त एहतजाज दर्ज किया। इन हमलों के नतीजे में पहले ही 3 भारतीय बाशिंदों की जानें तलफ हो चुकी हैं। अमरीकी एलची को नई दिल्ली में वजारत खारजा ने अमरीकी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी ने तलब किया। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि उसने एक बार फिर शहरी जहाजरानी के खिलाफ इंतहाई मोहलिक क़ुव्वत के इस्तेमाल पर अपनी गहरी तशवीश से उन्हें वाकिफ कराया। वजारत ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई नाकाबिले कबूल है और एक मुश्किल वक्त में एक हसास इलाके में बैनुल अक्वामी सरहदों में कारोबार के तहफ्फुज़, सलामती और इस्तेहकाम को कमज़ोर करती है। अमरीका के शाज़ डिफियर से दरख्वास्त की गई कि वह अपने हुक्काम को भारत की सख्त तशवीश से वाकिफ कराएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि खित्ते में कार्रवाई में शामिल अमरीकी फोर्सेज शहरियों की ज़िंदगी के नुकसान की रोकथाम के लिए सभी ज़रूरी इकदाम करें। यह दूसरी मरतबा है कि अमरीकी LG को वजारत में तलब किया गया। भारत के 3 मल्लाह जिनके बारे में इब्तदाई इत्तिलात मिली थी कि वो लापता हैं, तस्दीक हो गई है कि वो एक हमले में अपनी जानें गंवा बैठे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान पर इल्ज़ाम लगाया कि वह आबनाए हुरमुस से रवाना होने वाले भारतीय जहाज़ों पर ड्रोन हमले कर रहा है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब ट्रंप ने इन वाक़यात को कतई तौर पर नाकाबिले कबूल करार दिया। उनका यह बयान भारत की जानिब से अमेरिका के शॉज़ डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किए जाने और खलीज उमान में भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाज़ों पर अमरीकी बहरी फौजों के जारी हमलों पर सख्त एहतजाज दर्ज कराने के बाद सामने आया है। इससे कबल दिन में ईरान ने कमर्शल जहाज़ों पर अमरीकी हमलों की मजम्मत की थी और इन्हें हलाकत खेज करार दिया था और वाशिंगटन पर लाकानूनियत पर मबनी कार्रवाई में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया था जिससे आलमी अमन और समुद्री सरहद की सलामती को ख़तरा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भारतीय बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया और बैनुल अक़वामी बिरादरी से ज़ोर देकर कहा कि इसके लिए ज़िम्मेदारी तय की जाए। मगरबी एशिया में लड़ाई को रोकने की सिफारती कोशिशें आज भी नतीजा खेज साबित नहीं हुई। ईरान ने ऐलान किया कि उसने अमरीका के साथ किसी मुजवजा माहदे पर अभी तक कोई कतई फैसला नहीं किया है। यह बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की बराह रास्त तरदीद है जिसमें उन्होंने इससे पहले कहा था कि कुछ ही दिन में एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि किसी कतई माहदे के बारे में या दस्तखत किए जाने की कोई तकरीब मुनद होने के बारे में बात करना कबल अज वक्त है। अलबत्ता ने इस बात की तस्दीक की कि मुजाकरात के ज्यादातर मतन को मुसव्वदे की शक्ल दे दी गई है। मजीद तफसील मगरबी एशिया के हमारे नामा निगार से।
2: मगरबी एशिया के लिए ये नई सिफारती कोशिशें अहम मरहले में दाखिल हो गई हैं। मुजवजा हमले रोक देने के सदर ट्रंप के ऐलान के बाद ये उम्मीद पैदा हुई है कि खित्ते में वसी तर तनाज़े को टाला जा सकता है। हालांकि ईरानी हुक्काम का कहना है कि किसी भी हतमी समझौते को मंजूरी नहीं दी गई है और कई अहम उमूर हल तलब हैं। अहम नुकात में ईरान का एटमी प्रोग्राम, منجمد اثاثوں کو جاری کرنا اور آبنائے ہرمز کے اطراف مستقبل میں سیکیورٹی بندوبست شامل ہیں۔ اس صورتحال میں جبکہ مذاکرات کار پس پردہ بات چیت میں مصروف ہیں، پورے خطے میں فوجی سرگرمیاں بھی جاری ہیں، جس سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ

0: या सिफारती पेशरफ्त को नाकाम बना सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
1: सियोल की एक अदालत ने जनूबी कोरिया के साबिक सदर यून सुक यूल को आज 30 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें शुमाली कोरिया के साथ कशीदगी बढ़ाने के लिए ड्रोन कार्रवाई का हुक्म देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ के ऐलान को जायज ठहराने का कसूरवार पाया। सियोल सेंट्रल

0: के दौरान उनके रोल की बिना पर 30 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि साबिक सदर यून ने शुमाली कोरिया को मुश्तैल करने के लिए अक्टूबर 2024 में ड्रोन मिशन का हुक्म दिया और मार्शल लॉ नाफिज करने का पस मंजर तैयार किया। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर ज़बरदस्त तब्दीली रुनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदामात किए हैं। आकाशवाणी के खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज अपनी खारजा पॉलिसी के जरिए भारत को आलमी कायद बनाने की हुकूमत की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत अपनी जुर्रतमंदाना पहल की बदौलत उमंगों भरे इकदाम के जरिए आलमी सतह पर कायद के तौर पर उभरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और शमूलियत के साथ यकजा किया गया, जिससे आलमी प्लेटफॉर्म्स पर भारत की आवाज़ की गूंज सुनाई दी। भारत ने न सिर्फ अपने पुराने ताल्लुकात को मुस्तहकम किया बल्कि नए दोस्त भी बनाए, जिससे मुल्क की खारजा पॉलिसी में एक नई तवानाई पैदा हुई है। जबकि भारत पहले का नज़रिया मुल्क की खारजा पॉलिसी में लगातार सबसे ऊपर रहा। भारत की आलमी मसरूफियात में इंसानी बुनियादों पर मदद और कुदरती आफात के दौरान बचाव कार्रवाइयों ने अहम रोल अदा किया। श्रीलंका के शुमाली साहिल पर समंदरी तूफान दितवा की वजह से नवंबर 2025 में सैकड़ों लोग हलाक हो गए, हजारों अफराद को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा और अहम बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। इस दौरान श्रीलंका के आवाम के साथ इजहार यकजहती के तौर पर भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु का आगाज किया, ताकि श्रीलंका को फौरी तौर पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद और कुदरती आफत के दौरान राहत पहुंचाई जा सके। भारत की खारजा पॉलिसी की अहम झलक उस वक्त नजर आई जब कोविड-19 बहरान के दौरान भारत ने अपनी इंसानियत मरकूज सिफारतकारी के तौर पर वैक्सीन मैत्री पहल का आगाज किया। भारत ने जनवरी 2021 से 99 मुल्कों और अक्वामे मुत्तहदा के 2 इदारों को 30,12,00,000 से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके फराहम किए हैं। ऑपरेशन सागर बंधु और वैक्सीन मैत्री जैसी मुतासिर कुन पहल के इम्तिजाज की बदौलत भारत गुज़िश्ता 12 साल में आलमी कायद बनकर उभरा है। इंसानी बुनियाद पर मदद और इलाकाई साझेदारी के तई अहदबस्तगी की जड़ें भारत की वसुधैव कुटुंबकम जैसी सकाफती इकदार में पैवस्त हैं। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: पीवी सिंधु सिडनी में जारी ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट में ख्वातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। तीसरे दर्जे की भारतीय खिलाड़ी ने चीनी ताइपी की चिन सू यू को एक तरफा क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 21-6 और 21-9 से शिकस्त दी। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुतनव्वे शोबों में ख्वातीन की क्यादत वाली तरक्की को मजीद मुस्तहकम करने की हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए इंतहाई आला दर्जे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और उन्हें यात्रा का एक बिला रुकावट तजर्बा फराहम करने के तई मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभिंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल के सरहदी इलाकों में बाढ़ लगाने का काम शुरू हो गया है। वजारत खारजा ने आज अमरीका के शॉज डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किया और भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाजों पर अमरीकी बहरी फोर्सेज के जारी हमलों के मुतालिक सख्त एहतजाज दर्ज किया। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

तुझको जेबा गुरूर है तेरे।

रंग तेरा नूर है तेरा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था

0: व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के उत्तरी क्षेत्र के किसानों और कृषि क्षेत्र को विशेष सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस क्षेत्र में आलू और चाय का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। राज्य के कृषि विपणन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने सिलीगुड़ी में आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि राज्य सरकार यहाँ के किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगी। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों का कड़ा विरोध किया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय दल शामिल था। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, "The growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation." He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Defence Minister Rajnath Singh inaugurated the Advanced Weapons System Complex at the Defence Research and Development Organisations, or DRDO, Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex, during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari informed the media at a program in Kolkata yesterday. Mr. Adhikari said, "People are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border." The Chief Minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
2: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
1: External Affairs Ministry has summoned Chargé d'Affaires of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman.

0: The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety, security, and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. As Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron prepare to jointly inaugurate the Bharat Innovate Summit in Nice, France tomorrow, the spotlight is on India's remarkable startup journey over the past 12 years. From around 350 recognized startups in 2014, India has emerged as the world's third largest startup ecosystem, with over 2,35,000 DPIIT recognized startups and 131 unicorns. Railways Minister Ashwini Vaishnaw held a high-level review meeting with senior officials of Indian Railways on the Railway Recruitment Board or RRB recruitment process. During the meeting, Mr. Vaishnaw emphasized the need for a more transparent, accurate and technology-driven system. He also directed RRB to strengthen communication with candidates and stakeholders. He said that misinformation must be countered promptly with correct information. President Draupadi Murmu will review the passing out parade at the Indian Military Academy, Dehradun today. This year's passing out parade is set to be historic, as for the first time, women cadets will march alongside their male counterparts. In this grand ceremony, more than 500 gentlemen and lady cadets will take the final step and be commissioned as officers in the Indian Army. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's single semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei Chen Su-Yu in a one-sided quarter-final clash yesterday. Sindhu will next face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final today. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 1:10 और यह समय होता है बहुत ही सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ, गीत सुनहरे कार्यक्रम वाकई बहुत ही शानदार और बेहतरीन कार्यक्रम होता है। इसमें एक से एक बेहतरीन रचनाएं होती हैं जो गोल्डन एरा यानी कि गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत, जिसमें आप सुनेंगे एक से एक बेहतरीन रचनाएं। जी हाँ, एक से एक संगीतकार, एक से एक गीतकार और आवाज, जी हाँ, बहुत ही सुरीली बेहद खूबसूरत रचनाएं होती हैं इस कार्यक्रम के जरिए। तो आइए, आज इस कार्यक्रम में यानी कि गीत सुनहरे कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार और मेरे साथ हैं
2: मैं हूं मनोज कुमार।
1: जी हाँ, तो मनोज कुमार जी, एक गीत, कौन से गीत से हम शुरुआत करें ताकि हमारे श्रोता साथियों को भी अच्छा लगे और गीत का मतलब आनंद भी ले सकें, क्योंकि कुछ हमारे श्रोता साथी जो होते हैं और उनको भी क्योंकि नींद नहीं आती है, थोड़ा थक भी जाते हैं, लेकिन सोचते आखिरकार हम रात में हम करें तो करें, क्या करें, मजबूर हो जाते हैं, लेकिन हाँ, है ना हमारे साथ। जी हाँ, आपका अपना आकाशवाणी।
2: जी हाँ, आकाशवाणी में हम हमेशा आपके साथ हैं। तो इसी के साथ हम सुनते हैं ये गीत फिल्म रामराज्य से।

श्रोताओं, अभी ये गीत आपने सुना खुर्शीद की मधुर आवाज़ में। आइए सुनते हैं अगला गीत केएल सहगल साहब की आवाज़ में, फिल्म भंवरा से।

केएल सहगल साहब की आवाज़ में अभी ये मधुर गीत आपने सुना। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म हमराही से, मोहम्मद रफ़ी साहब की मधुर आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। अभी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुरी की आवाज में ये मधुर सा गीत। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। आइए श्रोताओं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म दर्द से उमा देवी की मधुर आवाज में।

अगला गीत आइए श्रोताओं सुनते हैं, फिल्म एक थी लड़की से लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, जे एम दुरानी और साथियों की मधुर आवाज़ में।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी ये गीत आपने सुना फिल्म महल से। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म आग से, मुकेश साहब की आवाज़ में।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना सुधा मल्होत्रा की आवाज़ में फिल्म भाई बहन से। किन्हीं कारणों से हम आपको शमशाद बेगम की आवाज़ में वो गीत नहीं सुनवा सके थे, उसके स्थान पर हमने आपको ये गीत सुनवाया। इसी के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म आवारा से मुकेश साहब की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 2:10 और यह समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गीत बहार का। श्रोताओं, गीत बहार कार्यक्रम में आप सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। आइए सुनते हैं सबसे पहला ये गीत फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि उन्होंने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने पर भारत का फिर से कड़ा विरोध जताया। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, समय हुआ है 3:10 ये कार्यक्रम, ये समय होता है बहुत ही सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ, गीत गजल। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम की पहली और खूबसूरत बेहतरीन बेहतरीन गजल। जी हाँ, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। या दोस्तों, फॉरएवर जगजीत सिंह, हिट ग्रेटेस्ट गजल। जी हाँ, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की बेहतरीन आवाज में शानदार खूबसूरत गजल। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत गजल की पहली सुंदर खूबसूरत गजल।

या दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गज़ल। जी हाँ, जाग दर्द इश्क जाग, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गज़ल अभी आप सुन रहे थे। साथियों, आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। कार्यक्रम चल रहा है गीत गज़ल। अभी आप सुन रहे थे हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज़ में शानदार रचना। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गज़ल की ओर। ये गज़ल आ रही है बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत गज़ल, और गज़ल हमने काटी है तेरी यादों में रातें अक्सर। जी हाँ दोस्तों, हमने काटी है तेरी यादों में रातें अक्सर। हरिहरन साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में सुंदर बेहतरीन रचना। गीत जानिसार अख्तर के हैं। और जी हाँ दोस्तों, और रिकॉर्डिंग की बात करें तो वो हैं टी सीरीज रिकॉर्ड्स और टिप्स प्राइवेट लिमिटेड्स के द्वारा। तो आइए सुनते हैं एक और शानदार बेहतरीन गज़ल हरिहरन साहब की आवाज़ में।

बहुत ही सुंदर बेहतरीन और खूबसूरत गजल, क्या कहीं इस गजल के बारे में। वाकई बहुत ही शानदार बेहतरीन। फिर सावन की रुत पवन चली, तुम याद आए, फिर तुम याद आए। वाकई बहुत ही लाजवाब अनमोल खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गजल की ओर। चित्रा सिंह की बेहतरीन आवाज में शानदार लाजवाब अनमोल गजल, दिल ही तो है। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारी बेहद खूबसूरत गजल अभी आप सुनेंगे। और बताते हैं कि ये जो गजल है वाकई बहुत ही शानदार है, बेहतरीन है। गुलजार्स और मिर्जा गालिब के द्वारा ये सुंदर बेहतरीन रचना है। चित्रा सिंह की आवाज है और लिरिक्स मिराज गालिब के हैं। तो आइए सुनते हैं ये शानदार गजल।

वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत गज़ल। गज़लों की एक अलग छाप होती है, पहचान होती है। वाकई बहुत ही शानदार, बेहतरीन गज़लों का समावेश बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही शानदार, लाजवाब, अनमोल, बेहद खूबसूरत गज़लें। बढ़ते हैं एक और शानदार, बेहतरीन गज़ल की ओर। यह गज़ल आ रही है बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत गज़ल। जी हाँ दोस्तों, ये गज़ल अपने आप में बेहद अनमोल है। जिंदगी चंद सवालों के सिवा, जी हाँ, और कुछ नहीं। मीनल जैन की आवाज़ में सुंदर और बेहद खूबसूरत गज़ल आ रही है और संगीत से सजाया है जयदेव गोसाई और कुणाल परमार ने, और गीत मिलिंद और गाधवी के द्वारा शानदार गीतकार। तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन गज़ल।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन गज़ल की ओर। जी हाँ दोस्तों, आती जाती हर मोहब्बत, एक शानदार बेहतरीन नगमा।

जी दोस्तों, वाकई आते जाते मोहब्बत है, चलो फिर से ही कोई बात नहीं। वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गज़ल अभी आप सुन रहे थे। आइए एक और खूबसूरत गज़ल सुनवाते हैं, बहुत ही शानदार गज़ल।

0: साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म में नाद ब्रह्म के अंतर्गत आज आप सुनेंगे एस बाला चंदर के नमन नारायणी वीणा वादन में। नमन नारायणी राग पर आधारित रचना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून 2026। सुबह के 4:53 और 4 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में ठीक 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकते हैं। 5:10 पर समय होगा कार्यक्रम आओ योग करें का। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा। 5:20 पर आप सुन सकते हैं देशभक्ति गीत और 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। 6 बजे आप पुनः हिंदी में समाचार सुनेंगे और 6:05 पर अंग्रेजी में। छह बजकर 10 मिनट पर समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का और 6:40 पर आप कार्यक्रम चिंतन सुन सकते हैं। 6:45 पर समय होगा रामचरितमानस बालकांड के भाग 85 का और 6:55 पर आप संस्कृत समाचार सुन सकते हैं। 7 बजे समय होगा हिंदी समाचारों का और 7:05 पर अंग्रेजी समाचारों का। 7:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम संगीतिका और 7:30 पर समय होगा कार्यक्रम गीतों भरी का। 8 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार हिंदी समाचारों का कार्यक्रम समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी कार्यक्रम का गुड मॉर्निंग न्यूज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट

0: पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने कहा कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने पर भारत का फिर से कड़ा विरोध जताया। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह के घातक हमले सर्वथा अनुचित हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्रों में भी आज तेज बारिश की आशंका है। आज राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में आंधी की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and launched a strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed 3 Indian mariners.

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। अभी आप सुन रहे थे समाचार। समय हुआ है सुबह के 5:10। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग, तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं, ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग तो को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। यह महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं।

印度德里广播电台现在报告新闻，由国防参谋部和联合作战研究中心联合举办的为期两天的研讨会。